अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सियावर रामचंद्र की जय, श्री अयोध्या राम की लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम नमामि भ

भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जा यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आदाब, हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से बोल रहे हैं एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण एफएम पहलगाम 100.1, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी श्रीनगर और एफएम बालतल सभी तीर्थयात्रियों का दिल से स्वागत करता है और उनके सुखद यात्रा की प्रार्थना करता है। अमरनाथ यात्रा 2024 के इस विशेष प्रसारण के साथ मैं हूं आमिर अशरफ। हमारी ये विशेष सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं, श्रोताओं और देश विदेश में बैठे बाबा बर्फानी के भक्तों का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आमिर और हर वर्ष की तरह आपकी सेवा में उपस्थित हम होते हैं, उपस्थित रहते हैं और अगले कुछ समय तक हम साथ चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर। श्रोताओं, जो सिर्फ पहाड़ों की यात्रा नहीं, सिर्फ कठिन रास्तों का सफर नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण, साहस और अध्यतम की एक अनोखी कहानी है। यह है श्री अमरनाथ

यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण जो आप तक पहुंच रहा है एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम पहलगाम 100.1 डीटीएच और आराधना सर्विस के साथ साथ हम वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, हर साल जब हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के कापट श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं, तब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा भारत हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। ये वो अवसर होता है जब हर उम्र, हर भाषा, हर प्रदेश और हर समाज के लोग एक ही पहचान के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। वो होते हैं बाबा भोले के भक्त। श्रोताओं, इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ इसकी पवित्रता नहीं बल्कि इसकी एकता भी है। यहां किसी की पहचान उसका नाम नहीं, उसकी बोली या उसका शहर नहीं होता। यहां हर व्यक्ति बस एक ही नाम से पुकारा जाता है। जी हां, वो है बम बम भोले। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का हेम शिवलिंग निर्माण होता है, जिसे लाखों श्रद्धालुओं भक्तों शिव के दिव्य स्वरूप के रूप में दर्शन करते हैं। सदियों से इस पवित्र स्थल का धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा इसी पवित्र गुफा में सुनाई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस रहस्य को किसी अन्य जीव के कानों तक पहुंचने से रोकने के लिए अपने साथ मौजूद सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था। माना जाता है कि नंदिनी को पहलगाम के निकट, चंद्रमा को चंदनवाड़ी, सांपों को शेषनाग और पंचतत्वों को पंचतरणी में छोड़कर भगवान शिव मां पार्वती के साथ इस गुफा में प्रवेश किए थे। यही कारण है कि आज भी यात्रा के प्रमुख पड़ाव इन्हीं पवित्र स्थानों से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, ये कहानी केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, यह हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मन शांत हो, अहंकार समाप्त हो और हृदय श्रद्धा से भरा हो। इसी श्रद्धा के साथ हर साल लाखों यात्री कठिन पहाड़ी रास्तों, बदलते मौसम और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। श्री अमरनाथ जी की आध्यात्मिक विरासत का एक जावी प्रतीक है। इस यात्रा में आपको भारत की विविधता भी नजर आती है और एकता भी। कहीं गुजरात से आए श्रद्धालु भजन गाते हुए नजर आते हैं, कहीं तमिलनाडु से आए भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते दिखाई देते हैं, कहीं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और देश के अनेक हिस्सों से आए लोग एक ही भावना के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। और इसी के साथ कश्मीर की मेहमान नवाजी इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। यहाँ के स्थानीय लोग हर साल खुले दिल से यात्रियों का स्वागत करते हैं। वर्ष 2024 की ये अमरनाथ जी यात्रा भी इसी आस्था और समर्पण का एक नया अध्याय लेकर आई है। इस वर्ष 3 जुलाई यानी आज से यात्रा का आरंभ हुआ, आगाज हुआ। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन दल और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स इससे जुड़े हैं, कई एक अनेक सेवा समितियों ने मिलकर इस बार भी यात्रियों के उनके लिए जो है व्यापक और कड़ी प्रबंधन किए हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी प्रमुख उद्देश्य एक ही है, हर श्रद्धालु जो है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और बाबा बर्फानी के दर्शन करके सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौट सकें। आज की यात्रा पहले की तुलना में अधिक कह लीजिए कि कड़ी सुरक्षा में, सख्त हिफाजती हिसार में आपको जो है भगवती नगर के बेस कैंप से आगे ले जाया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस साल भी
पहले भगवती नगर, उसके बाद वॉलनट फैक्ट्री, उसके बाद पहलगाम से

0: जिन्हें जिस जत्थे को जाना होगा उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और ज़िला गांधरबल से जो बालतल का हमारा पड़ाव पड़ता है वहाँ से जिनको आता है तो उन्हें शादीपोरा के बेस कैंप में ठहराया जाता है, और मनीगाम का जो एक ट्रांजिट कैंप है हमारा वहाँ उन्हें ठहराया जाता है, और अगली सुबह उन्हें बालतल बेस कैंप की ओर रवाना कर दिया जाता है। बालतल का जो मार्ग है थोड़ा जटिल है, लेकिन बहुत ही कम समय में आप वहाँ से यात्रा कर पाते हैं। हालांकि जो हमारे दीपेंद्र गिरी जी हैं, स्वामी दीपेंद्र गिरी जी, उनका कहना है कि भगवान शिव जो है वो जो असली जो उसका रूट है वो पहलगाम है, और वो वहीं से खुद आते हैं और वहीं से अपने सफ़र का जो इख्तिताम है, अंत है, वो वहीं से करते हैं। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विशेष प्रसारण में हम अपने श्रोताओं के इनके साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला बुनियादी पड़ाव जो हमारा होता है वो भगवती नगर बेस कैंप होता है। वहाँ से हम हर वर्ष की तरह अपने संवाददाता जावेद मेहराब से जुड़ते हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, आपका स्वागत करते हैं अमरनाथ यात्रा 2024 की इस विशेष प्रसारण में, आपका खैरमकदम करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया अमित।
0: जी जावेद, बताएं आज पहला दिन यात्रा की शुरुआत किस माहौल में हुई, यात्रियों में कितना वो उल्लास उत्साह देखने को मिला, और प्रशासन की जो तैयारियां हैं किस तरह का गियरअप उन्होंने किया है?
1: मैं आपको बता दूं कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज दूसरे रोज सुबह सुहाने मौसम में यहाँ पहले बेस कैंप भगवती नगर आधार शिविर से हुई, और यहाँ से जो दूसरे रोज तीर्थ यात्री रवाना हुए उनमें जोश और उत्साह बहुत उठान था उसमें। और इस दौरान मुल्क भर से ये यात्री, जहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से यात्री जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ से जो उनका निकलना है वो एक बेहतर तरीके से रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि यात्रियों को पिछले 2 दिनों से यहाँ अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन, यात्रा की रवानगी और यात्रा को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें वो बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो इंतजामात इस बार अलग से भी किए गए हैं और कुछ डिफरेंट भी किए गए हैं, क्योंकि हर बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये कोशिश होती है कि इंतजामात को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी की जाए। उसमें सबसे बड़ी जो इस बार कोशिश की गई है वो तवी रिवर फ्रंट जो है, बहुत बड़ा अहाता है जो तवी के किनारे पर बनाया गया था, पिछले 2 सालों से उस पर काम लगा हुआ था, फाइनली वहीं पर रजिस्ट्रेशन और खाने पीने का और जो यात्रियों के ठहरने का पहला मरकज है वो तवी रिवर फ्रंट को बनाया गया है, और वहां पर किसी तरह की कोई भीड़ और किसी तरह का कोई जो माहौल में, क्योंकि पहले दिन जो होता है बहुत सख्त होता है, इंतजामात को पहले दिन से ही सुचारू बनाना, लेकिन जो तवी रिवर फ्रंट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को और काम करने वाले जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये आसान हुआ है, तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन, खाने पीने की और दूसरी जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर तौर पर मौसर हो रही है। और उसके अलावा इससे क्या एक और फायदा ये हुआ है कि शहर के बीचों बीच जो ट्रैफिक के जाम लगते थे, तीर्थ यात्रियों को पहुंचकर यहाँ सड़कें बंद की जाती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त पर की है वो तवी रिवर फ्रंट का जो एरिया है वहां से शुरू किया है। हालांकि रवानगी जो है वो भगवती नगर के पहले बेस कैंप से ही होनी है, और यहाँ से ही तीर्थ यात्री अपनी सारी टोकन, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप और बाकी जो चीजें हैं जो रस्मी जो आपको करनी है तीर्थ यात्रा से जाने से पहले जो करनी है वो सब इसी तवी रिवर फ्रंट पर होती है, और उसके बाद उन्हें भगवती नगर के बेस कैंप भेजा जाता है, और जहां से अब पिछले लगभग कल से तीर्थ यात्रा शुरू हुई थी, आज दूसरा दिन है यात्रा का। और यात्रा

0: जो है वो सुखद तरीके से यहाँ से भी आज दूसरे रोज भी रवाना हुई है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जैसा कल उत्साह था, कल तो यात्रा का पहला दिन था, आज भी उसी उत्साह और उसी वलवले और के साथ भगवती नगर के पूरे हाता हर हर महादेव और बम बम भोले के भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। आज दूसरे दिन भी यात्री बेहद खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। तीर्थ यात्रियों में पहली बार कुछ लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं और बहुत से जो तीर्थ यात्री हैं वो हर बरस इस मुकद्दस सफर का हिस्सा बनते हैं। तो जिनमें बुजुर्ग, नौजवान, साधु, साध्वी, महिलाएं, बच्चे भी शामिल होते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने को उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तीर्थ यात्री जो है जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो इंतजाम है उस पर मुतमइन भी नजर आ रहे हैं और बेहतरीन इंतजाम में के साथ साथ जो यहाँ सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं वो भी उनके सफर को मजीद आसान बना रहे हैं। और जो एक सिस्टम के साथ इस बार तीर्थ यात्रा, क्योंकि हर बार कोशिश होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि कुछ चेंजेस भी की जाए और यात्रियों को तकलीफ न हो उसके लिए कुछ कदम भी उठाए जाए। इस बार तली रिवर फ्रंट का जो ये एरिया है, क्योंकि ये बड़ा एरिया है, यहाँ तीर्थ यात्री आराम से अपनी जो रस्मी उनकी जो करनी होती है तीर्थ यात्रा से जाने से पहले, जो रजिस्ट्रेशन है, RIFB कार्ड्स हैं, उसके अलावा जो टोकन लेना है, उसके अलावा जो उनके दिन के खाने का पीने का यहाँ जो इंतजाम भी रखा गया है वो सब देखते ही बनती है। और आज पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की जो कुल संख्या रही वो आज 3,865 रही, जो 201 गाड़ियों में यहाँ भगवती नगर के बेस कैंप से रवाना हुए। बालटाल की तरफ अगर मैं बात करूं तो बालटाल की तरफ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 1,735 रही, जिसमें मर्द जो है वो 1,259 रहे, महिलाएं 335 रही, बच्चे 4 थे और साधु 104 और साध्वी 33 शामिल है। इसी तरह प्राचीन पहलगाम का जो एरिया रास्ता है जहाँ से यात्री यहाँ से भी तीर्थ यात्रा की तरफ बाबा बर्फानी की तरफ जाने जाते हैं, तो यहाँ तीर्थ यात्रियों की इस रास्ते की तरफ तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 2,130 रही, जिसमें मर्द 1,706, महिलाएं 283, साधु 126 और साध्वी 15 शामिल हैं। और यात्रियों ने इस बार जो ये तवी रिवर फ्रंट का जो मैं एरिया कह रहा था इस पर जो रजिस्ट्रेशन और टोकन और उसके अलावा जो मेडिकल चेकअप और रहने और खाने पीने की जो इंतजाम रखे हैं उस पर भी वो बिल्कुल मुतमइन भी थे और वो सराह भी रहे थे सहूलियात को। और जब जम्मू में मैं कहूँ तो तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या न सिर्फ इस एरिया में दिखाई दे रही है बल्कि शाम होते होते पूरे शहर में भी तीर्थ यात्री बाजारों में देखे जा सकते थे और अकीदतमंद बहुत मजहबी जोश और उत्साह के साथ इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है।
1: बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद जावेद। प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की जो नेक मनोकामनाएं हैं वो अच्छे से पूरी हो जाएं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद। जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमसे जुड़ चुके थे। और श्रोताओं, आज की जो ये यात्रा है पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तकनीकी और अधिक सुरक्षित बन चुकी है, जो हर वर्ष नवीनतन होती जा रही है। रजिस्ट्रेशन से लेकर RFID ट्रैकिंग तक, मेडिकल स्क्रीनिंग से लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स तक, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर वेदर मॉनिटरिंग तक, हर पहलू पर विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन श्रोताओं, इतनी सुविधाओं के बीच एक बात आज भी नहीं बदली और वो है श्रद्धालुओं की आस्था। आज भी जब कोई यात्री पहली बार पवित्र गुफा के दर्शन करता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। होंठों पर केवल एक ही नाम होता है, हर हर महादेव। इसी आस्था को और मजबूत बनाने के लिए आकाशवाणी भी वर्षों से इस पवित्र यात्रा का एक विश्वसनीय साथी बन चुकी है। यात्रा से जुड़े आधिकारिक दिशा निर्देश, मौसम की जानकारी, सुरक्षा संबंधित सलाह, भक्ति संगीत

0: और बाबा बर्फानी की महिमा, ये सब आकाशवाणी के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचता रहता है। और इस वर्ष भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप तक लेकर आए हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं, अभी जो हमारा मुख्य दौर होता है भगवती नगर बेस कैंप का, वहां से हमारे साथ जुड़े थे जावेद मेहराब। और भगवती नगर से निकलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कॉन्वॉय की मूवमेंट किस तरह से हो रही है और किस तरह की सुरक्षा रखी गई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाकी जो ताज़ा जानकारी क्या है, मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है, उस हवाले से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जुड़ चुके हैं। तस्कीन, खैर मकदम करते हैं आपका।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति बनी हुई है और मौसम का अपडेट भी हमें देते चलिए, और बताइएगा कि किस तरह जो कॉन्वॉय है वो आगे घाटी की ओर रवाना दवा है।
1: जी शुक्रिया। आज जो श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा बेज जो जम्मू से रवाना किया गया और कल जो पहला बेज गया था, क्योंकि अब कश्मीर के हिसाब से आज पहला दिन है, लेकिन जम्मू के हिसाब से जो जम्मू डिवीजन के हिसाब से आज दूसरा दिन है श्री अमरनाथ यात्रा का, जो पिलग्रिम्स आज कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। आज करीबन 3,865 दोनों जो कानवाई जा रही है बालतल और पहलगाम के रास्ते, तो उनमें 3,865 यात्री सवार हैं और 201 गाड़ियां इनके इस कार्रवाई में शामिल है। और अभी जो पहला काफिला जो सुबह जम्मू से करीबन 3:13 पर रवाना किया गया था बालतल के रास्ते, तो वो काफिला अब कुछ मिनट के बाद बानहाल पहुंचने वाला है। और इस जो आज इस साल कुछ चेंजिंग की गई है कि जो पिछले साल दोनों काफले चंद्रकूट में भी रुकते थे और दोनों काफले फिर बानहाल में भी रुकते थे, जो इनके लिए लंगर्स वगैरह का इंतजाम रखा गया है श्री अमरनाथ यात्रियों के, लेकिन इस साल थोड़ा तब्दीली की गई है। जो बालतल वाला जो बालतल की गाड़ियां होंगी, जो आज के ट्रैफिक में 115 गाड़ियां हैं, टोटल 1735 यात्री इनमें सवार है, तो उनको जो रामबन के बजाय उन्हें बानहाल में रोका जाएगा, उनके जो सुबह नाश्ते वगैरह का इंतजाम वो बानहाल में किया जा रहा है। कुछ वक्त के बाद ये बालतल वाला भी, जो पुलिस के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि नाचलान है करीबन 7-8 किलोमीटर बानहाल से पीछे है, तो अब बढ़ रहे हैं बानहाल के लांबर ग्राउंड की तरफ, जहां पर इनके लिए 22 लंगर कायम किए गए हैं और तमाम तरह के इंतजाम वहां पर रखे गए हैं। जबकि पहलगाम का अभी रामबन पहुंचना चाहता है, तैयार है, रामबन पहुंचने वाला है, नाशरी टनल क्रॉस कर चुका है, तो इसमें 86 गाड़ियां हैं और 2130 यात्री हैं, और इनके लिए जो हाल्ट जो है ये सिर्फ रामबन में रुकेंगे और इन्हें बानहाल में रुकने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, बिल्कुल आज खुशगवार मौसम बना है, क्योंकि कल हल्की हल्की बारिशें हुई इस रामबन बानहाल स्ट्रेच में, इस हल्के इस सेक्टर में, तो उसकी वजह से जो मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है और ट्रैफिक की जो बाकी जो मूवमेंट है यात्रा के नॉन यात्रा जो है तो उन्हें रोका गया है, क्योंकि उनके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की, जिसके मुताबिक जो जम्मू से जो ट्रैफिक कश्मीर की वादी की तरफ आएगा, जो यात्रा छोड़ने के बाद छोड़ा जाएगा, तो उसमें वो उनके लिए जो टाइमिंग रखी गई वो नगरोटा से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक उनको छोड़ा जाएगा, उसके बाद उधमपुर से 8 बजे से 1 बजे तक, और काजीगुड बानहाल टनल जो है वहां पर 3 बजे हाल्ट होगा। 3 बजे के बाद किसी भी यात्रा गाड़ी या टूरिस्ट गाड़ी को वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जो कश्मीर से जम्मू जाने वाले और जम्मू जाने वाला ट्रैफिक है, तो उनके लिए भी इस साल रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, जैसे ट्रक्स को रात शाम के 7 बजे के बाद जम्मू की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जो छोटी मुसाफिर गाड़ियां होती है, छोटी गाड़ियां होती है, उन्हें रात के 11 बजे के बाद जम्मू की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। जो ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया उसके मुताबिक जो काजीगुड से जम्मू यानी कश्मीर से जो जम्मू जाने वाले मुसाफिर होंगे, जो आम गाड़ियां होंगे, उन्हें 11:30 बजे चलने की इजाजत होगी काजीगुड से जम्मू की तरफ, और 5:30 बजे तक इनको चलने की इजाजत होगी, उसके बाद इसका भी कट ऑफ टाइम कर दिया गया है। इस दौरान जो हाईवे है उसे खसूसी तौर पर बेहतर किया गया है पिछले कई रोज से, क्योंकि बहुत काम किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इसमें जो कुछ चीजें ऐड की गई, जैसे एक टनल 3.5 किलोमीटर का टनल जिसे कल ही खोला गया श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, ये डिगडोल और पंटीहाल के दरमियान है, एक जो खतरनाक स्ट्रेच है, हादसाती भी है और उसमें पत्थर भी गिरते हैं, वो जब बारिशें होती है तो स्लाइडिंग भी होती है, तो

0: बाईपास करने के लिए 3.5 किलोमीटर का टनल बनाया गया है, उससे बड़ा फायदा मिल रहा है, उससे बहुत स्मूथ हो रहा है जो ट्रैफिक की मूवमेंट है। उसके अलावा जो एक वायाडक्ट या फ्लाईओवर हम जिसे कहेंगे, तो वो भी करीबन 810 मीटर का वायाडक्ट खोल दिया गया है यात्रा के लिए, तो उस वजह से जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है और सिक्योरिटी के खातिर को इंतजाम किए गए पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो पूरी जो मुस्तदी के साथ जो निजाम जो मुरतब किया गया है, जिन्हें हर साल अगर देखेंगे हम जिसे कई सालों से ये कवर कर रहे हैं, तो उसमें ये जो हर साल बेहतरी आती है, तो इस साल भी बहुत सारी बेहतरियां देखने को मिल रही है जो श्री अमरनाथ यात्रा आ रही है।
1: चलिए तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन हमसे जुड़े थे। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, RFID कार्ड का क्या महत्व है, कौन कौन इस यात्रा में शामिल हो सकता है और यात्रा से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। फिलहाल आपके लिए ये रुद्र पाठ।

0: विशेष प्रसारण यात्रा 2024 के सिलसिले में प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी एफएम बालतल से। इसके साथ साथ आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इमरान नायको श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बताएं इमरान, पहला जो जत्था है उसके पहुंचने को लेकर वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैंप में यात्रियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?
1: बिल्कुल, देखिए सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जिसका बाकायदा आगाज कल से ही हो चुका है, और ये सिर्फ कल से ही तैयारियां नहीं बल्कि एक महीने पहले हम देख रहे हैं या डेढ़ महीना पहले से ही हम देख रहे थे कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी सिविल ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और सारी जो सरकार की जो सिविल डिपार्टमेंट की जो जो एहलकार है वो इसमें लगे हुए थे, और सारा जो पुलिस आर्मी बीएसएफ आईटीबीपी सीआरपीएफ यानी कि वो सारी एजेंसी जो है दिन रात इसकी तैयारियों में लगे थे, और इसके अलावा जो आम लोग हैं जो आम शहरी है या जो स्टेक होल्डर्स है वो भी यात्रा को लेकर तैयारी कर रहे थे। और कल जो यहाँ नवगाम श्रीनगर बाईपास पर यात्रा पहुंचे तो आपने खुद देखा होगा कि किस जोश और जज्बे के साथ यात्रियों का जो है पुरजोश इस्तकबाल किया गया, और जगह जगह पे मालाएं पहनाई गई, उन्हें पानी और दीगर मशरूबात जो है वो उनमें तकसीम किया गया। ओवरऑल अब यात्रा का बाकायदा आगाज हो चुका है और ट्रांजिट कैंप यहाँ श्रीनगर पांथा चौक में हर साल की तरह इस साल भी कायम किया गया है, और इस ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, सहूलियात रखी गई है। ऑल दो के यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन ग्रीवेंस मैकेनिज्म या हेल्प डेस्क कायम किया गया है, लेकिन यहाँ फिजिकली भी यात्री जो है यहाँ इस डेस्क पे जा सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने एहलकार तैनात रखे हैं। ऑनलाइन सुविधाएं रखी गई है कि अगर किसी यात्री की कोई शिकायत हो तो इस पर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है ताकि उनकी जो ग्रीवेंस है उनका जो कोई भी मसला हो एज पॉसिबल उसको हल किया जाए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चाहे वो पीने के पानी की हम बात करें या फिर हम वॉशरूम्स की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है उसको पहले से ही गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था, वो बहम रखी गई थी, और इसलिए हम देख रहे हैं कि यात्रियों के लिए सारी चीजें सारी सुविधाएं जो है रखी गई है। इसके अलावा श्रीनगर में जो हर साल की तरह हम देख रहे हैं कि HMT इलाके में जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है ये भी जो है बिल्कुल फुली फंक्शनल है, और इस पे भी सारी यात्रा के जो रूट्स है चाहे वो बालतल रूट हो या फिर हमारा नुनवन बेस कैंप वाला रूट हो, तो दोनों साइड से या जितने भी यात्रा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन पे यहाँ से निगरानी की जा रही है, वेदर यहाँ से देखा जा रहा है, सिक्योरिटी जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर यात्रा को लेकर श्रीनगर शहर की स्पेशली मैं जब बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, यात्रियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ मुश्किल ना हो, साथ साथ आम शहरी जो है उन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से कल पहले ही दिन उनका इस्तकबाल किया, हमेशा इसका इस्तकबाल करते रहते इसका इंतजार करते रहते, और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि वही फिजा और वही एक अलग सा ही माहौल यात्रियों के आज पहले या दूसरे दिन दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जहां तक वेदर की बात है तो वेदर भी बड़ा ही मौसम भी बड़ा खुशगवार है, सुहाना है, हालांकि सुबह हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन हल्के से बादल भी इस वक्त श्रीनगर शहर में छाए हुए हैं, हल्की सी ठंडी हवाएं भी चल रही है, और इस सुहाने इस खूबसूरत मौसम के बीच में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा का बाकायदा आगाज के साथ साथ श्रीनगर से भी यात्रियों के काफिले का आना और यहाँ से अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए जाना वो सिलसिला शुरू हो चुका है।
0: धन्यवाद इमरान आपका। श्रीनगर के एकमात्र ट्रांजिट कैंप से हमारे साथ ये जुड़े थे इमरान नायको। श्रोताओं, बालतल का जो मार्ग है वो थोड़ा जटिल माना जाता है, थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन कुछ वक्त जो हैं वो वहाँ से आना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें वक्त जो है वक्त आपका बच जाता है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस बार जो सुरक्षा है, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य ज़रूरी सुविधाएं हैं क्या क्या उपलब्ध कराया गया है बालतल बेस कैंप से, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रहीम रिजवान, हमारे संवाददाता। रिजवान, खैर मकदम करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका भी और हमारे श्रोताओं को हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं और धन्यवाद उनका भी करना चाहते हैं कि इस वक्त हम बालतल बेस कैंप से आगे दुमेल पे मौजूद हैं और आज सुबह सवेरे 2:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जबकि हमारे श्रद्धालु जो है वो सिर्फ 2 बजे पहुँचे यहाँ पे। उस वक्त वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 2:30 बजे के बाद वर्षा, तेज वर्षा शुरू हुई है और मौसम बिल्कुल सुहाना लग रहा है पूरे क्षेत्र में। जी
0: जी रिजवान बताइए, इसी पर हम बात करेंगे, मौसम को लेकर यात्रियों की आमद और प्रशासन की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दें और अभी की क्या स्थिति है मौसम को लेकर वो हमारे सामीन के साथ शेयर कीजिए।
2: अभी मौसम बिल्कुल सुहाना ही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बिल्कुल बालतल के पूरे क्षेत्र में जी। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि मौसम बिल्कुल सुहाना है, अगरचे वर्षा हो रही है लेकिन सुबह सवेरे 2 बजे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। दुमेल कंट्रोल गेट पे कतारों में भी सब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपनी बारी पे RFID कार्ड हासिल करके पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। ताहम तेज वर्षा के कारण श्रद्धालुओं को 2:05 बजे तक इंतजार करना पड़ा और मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आते ही जिले के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और SSP गांधरबल सुधांशु दामा और यात्रा नोडल अफसर बालतल राहुल यादव की मौजूदगी में यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर पवित्र गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले 3,404 यात्रियों में से 1,336 पुरुष, 1,450 महिलाएं, 5 बालक-बालिका, 6 साधु, 3 साधियां और 4 सुरक्षाकर्मी भी थे। हर हर महादेव बम बम भोले का पवित्र नाद करते हुए पवित्र गुफा की तरफ निकल पड़े। यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिली और वो जय जयकारे के नारे लगा रहे थे। श्रद्धालुओं को ऊंचे पर्वतों के बीच गुफा तक ले जाने एवं सुरक्षित वापस लाने के लिए जहाँ जल प्रशासन के द्वारा उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं, वहीं सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, यानी चारों ओर जगह जगह यहाँ सुरक्षा कर्मी जो है वो चौक और चौबंद रखे गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यात्रियों के लिए यहाँ जगह जगह लंगर लगाए गए हैं जहाँ उन्हें भोजन के लिए मुफ्त खाना दस्तियाब है, खाने पीने के लिए सुविधाएं जगह जगह मौजूद हैं। और अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो चिकित्सा सुविधाएं भी जगह जगह दस्तियाब रखी गई हैं। इस तरह कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि जिला प्रशासन गांधरबल के द्वारा यात्रियों को इस तीर्थ यात्रा के दौरान तमाम सहूलियात जो है वो हम पहुँचाई जा रही है और यात्रा जो है अभी जारी है। इस वक्त हल्की सी बारिशें हो रही है बालतल के पूरे क्षेत्र में और पवित्र गुफा तक मौसम जो है अब आलोद ही है, लेकिन यात्रा जो है वो जारी है।
0: रिजवान हमें बताइएगा कि बड़ी उम्र के जो भक्त हुआ करते थे उनकी सहूलत के लिए प्रशासन ने चौपर सर्विस उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस वर्ष आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है?
2: नहीं नहीं, पहले पहल ऐसी सुविधाएं उपलब्ध थी यहाँ पे चौपर के जरिए, जो यात्री थे ना ही बुजुर्ग हमारे बल्कि नौजवान भी ये चाहते थे कि वो चौपर के जरिए
0: सफर करें जी,
2: जाकर हाँ जाकर दर्शन करेंगे बाबा भोलेनाथ की, लेकिन इस साल जो वो सुविधाएं हैं उपलब्ध नहीं रखी गई है। हालांकि बहुत से यहाँ होटल वाले उन्होंने हमारे साथ बात की है और वो डिमांड भी करते हैं कि चौपर सर्विस जो है वो फिर से चालू किया जाए और वो यात्री जो है जिनके पास समय नहीं होता है और देश के विभिन्न भागों से यहाँ आकर तीर्थ यात्रा पे बाबा बर्फानी का दर्शन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अब वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं रखी गई है।

तरह अब यात्रियों को उसी तरह आना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करके बाजाबता तौर उसके बाद उनको यहाँ बाई रोड ही आना पड़ेगा, तो यहाँ रुक के फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, तो तभी जाके वो दुमेल कंट्रोल गेट पार करके वहां से RFID कार्ड हासिल करके गुफा की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो ये हम अपने श्रद्धा श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि इस साल

0: लोग हैं, कम से कम उन्हें राहत मिले ताकि यात्रियों का जो ये सफर है और ज्यादा आसान बन सके। देखिए ना, किसी भी पवित्र यात्रा को सफल बनाने के लिए सिर्फ श्रद्धा ही काफी नहीं होती। श्रद्धा के साथ साथ जरूरी होती है कि सही तैयारी, और इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं ताकि हर यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बना सके। स्टूडियोज की घड़ी में 8 बजने को हैं। फिलहाल के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली समाचार के लिए, उसके बाद दोबारा आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे।
1: हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और

2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला

0: 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाइची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाइची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा दाइश लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद और उनकी ज़ेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया जो अक़्वाम मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को ख़त्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दोतरफा खुसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तहत अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बहुम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आज़ादाना और खुला भारत बहरुल काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दोतरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे जिनमें सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात इंफॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत

0: मदद करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ नामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराखची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वह अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स की जानिब से ये कहे जाने के बाद के ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्दमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहजीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है, जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और इकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा तिब्बती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निज़ाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रोशनास कराना है। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज के रियासती वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे, जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है, जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह खवातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
2: अमरनाथ की जय, बोलो शिव शंकर की जय। بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے ناروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس گار کی طرف روانہ ہو گئے۔ 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے۔ دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں۔ دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح

0: मुंह से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज से पहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसानात की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कान के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंगलवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबार ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई

0: की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के साथ साथ आराधना चैनल के साथ साथ, और आप हमें सुन रहे हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी। सुबह के 8:45 हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर में मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनसे मौसम की जानकारी लेते हैं। और डॉक्टर साहब, खैर मकदम करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बताइए हमारे श्रोताओं को कि मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। जम्मू से लेकर स्टार्ट कीजिए ताकि अपने जो श्रद्धालु हैं वो अपडेट रहें।
2: बिल्कुल, अभी मॉर्निंग आवर से ही आज बारिशें हुई अक्रॉस वैली और बिलखसूस पहलगाम से लेकर होली केव तक, और इसी तरह बालताल से लेकर होली केव तक हल्की बारिशें रही। बीच बीच में थोड़ी तेज तरह की भी बारिशें रही और ये अभी लगभग 7 तक रही कुछ एक मकामात पे। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी अभी मौसम थोड़ा सा अबरालूद बना हुआ है और दिन में मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। दोपहर के बाद जो है, लगभग दोपहर के आसपास एक कल बारिशों का फिर से हो सकता है, जिसका असर जो है यहाँ पहलगाम से लेके होली के और इसी तरह बालताल से लेके होली के उसके अंदर भी जो है देखा जा सकता है। तो दोपहर के बाद फिर से 1-2 का बारिशों का स्पेल हो सकता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूड होली के।
1: डॉक्टर साहब, जम्मू की क्या सूरत हाल रहने वाली है?
2: जम्मू में भी मौसम अभी थोड़ा सा क्लाउडी है और हल्की बारिशें खासकर दोपहर के आसपास जो है होने के चांसेस हैं जम्मू रीजन के अंदर भी। और इसी तरह नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन थंडर शावर खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और इसी तरह कल दोपहर के आसपास भी जो है थोड़ी सी हल्की बारिशों के चांसेस हैं, लेकिन कोई मेजर या कोई हेवी रेनफॉल के चांसेस नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मॉनसून एंटर कर चुका है, ऐसे में जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा?
2: बिल्कुल, जो भी एडवाइजरी है एडमिनिस्ट्रेशन का, टाइम बोर्ड का, और इसी तरह गर्म मलबूसात थोड़ा सा ले लें ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम रहता है खासकर बारिशों के बाद। तो जो एडवाइजरी है खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, टाइम बोर्ड का, उसको जो है पूरी तरह पालन।
1: चलिए, टाइम एंड अगेन आपसे बात होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनगर में मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार अहमद को आप सुन रहे थे, और इनका कहना है कि अभी जो सुबह सवेरे हल्की सी वर्षा हुई, एक और वर्षा का जो इम्कान है वो जताया जा रहा है दोपहर के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉनसून जो है वो कश्मीर एंटर कर चुका है, तो ऐसे में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। कब मौसम बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। श्रोताओं, तो हम आपके साथ बात कर रहे थे कि ये जो यात्रा है इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है। समाचार से पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। यात्रा में शामिल होने के लिए हर श्रद्धालु को पंजीकरण करना जो है वो अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन आधिकारिक माध्यमों के जरिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल संख्या का लेखा जोखा रखना नहीं होता है, बल्कि याद रखना चाहिए कि हर यात्री की सुरक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा के दौरान आवश्यक सहायता सुनिश्चित कराना भी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद यात्री को एक यात्रा परमिट प्रदान किया जाता है। इस परमिट पर लिखी तिथि का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यात्रा के लिए निर्धारित दिन पर ही बेस कैंप से आगे बढ़ना उचित होता है, ताकि व्यवस्था और जो सुरक्षा है वो दोनों बनाए रखी जा सकें। श्रोताओं, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे हम CHC के नाम से भी जानते हैं। समझ लीजिए कि ये एक फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रमाण है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर होती है। कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम जैसा कि हम अभी कह रहे थे, और कच्चे

जो आपको चढ़ाई करनी पड़ती है पैदल, शरीर पर दबाव डाल सकता है। इसलिए यात्रा से पहले अधिकृत डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर हृदय रोग हो, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता हो, यानी यानी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती हो, सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, या अन्य कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह के जो यात्रा है वो करना उचित नहीं माना जाता। इस यात्रा में आमतौर पर 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाती है यात्रा करने के लिए। इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का विशेष ध्यान उनके लिए रखा गया है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन तभी सुखद होंगे जब आप स्वस्थ होंगे। इसलिए किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को छुपाना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। देखिए, एक और बात जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की, जो पिछले कुछ वर्षों में यात्रा का एक कह लीजिए कि आवश्यक हिस्सा बन चुकी है, यह RFID कार्ड। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसी तकनीक है जो यात्रा के दौरान प्रशासन को यात्रियों की स्थिति पर नज़र रखने में सहायता प्रदान करती है। यात्रा के दौरान इस कार्ड को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है और आपको रखना भी चाहिए, यह आपकी ही हिफाजत के लिए है। इस व्यवस्था से बीट प्रबंधन, प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और परिवार के सदस्यों को आवश्यक सूचना पहुंचाने में भी मदद मिलती है। तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि कह लीजिए कि जीवन की सुरक्षा भी है। श्रोताओं, अक्सर देखा गया है कि कई यात्री पहाड़ों की खूबसूरती देखकर तेज रफ्तार से चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, लेकिन याद रखें, ऊंचाई पर ये जो जल्दबाजी है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टर और रेस्क्यू टीम्स की सलाह है कि यात्रा के दौरान धीरे चलना, बीच बीच में विश्राम करना और शरीर को पानी की कमी से बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। बीमार लोगों की तो बात ही नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते जिनकी थोड़ी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, और जो अच्छे सेहतमंद लोग होंगे उनके लिए भी ये एडवाइजरी है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऊंचाई है 3,888 मीटर की ऊंचाई पर है ये पवित्र अमरनाथ गुफा। तो ऐसे में आप अपनी ओर से कोई भी डिसीजन ना लें, ये हमारी आपसे विनती है। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ साधारण तैयारियां भी बहुत काम आती हैं, जैसे अच्छे मजबूत एयर शूज आप साथ लाएं, वो अच्छा रहता है। गर्म कपड़े लाएं, ऊनी मोजे लाएं, एक रेन कोट लाएं, अपने जो आपके जो पर्सनल मेडिसन्स होते हैं वो आप साथ रखें, एक वाटर बॉटल साथ रखें, पानी तो रास्ते में कहीं भी मिल सकता है। खुद को गर्म रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भुने हुए चने, एनर्जी स्नैक्स वगैरह जो आप बेहतर जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक सोच भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये सफर सिर्फ पैरों से नहीं, हौसले से भी तय होता है, बल्कि हौसले से ही तय होता है। मौसम का भी यात्रा में बहुत बड़ा योगदान होता है। हिमालय का मौसम कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका अंदाज़ा लगाना हमेशा आसान नहीं होता है। एक ही दिन में तेज़ धूप, बारिश, कोहरा और ठंडी हवा का अनुभव हो सकता है, यानी मौसम का जो है बालतल में, जैसा कि हमने खुद उसका मुशाहिदा किया है, एक मिला जुला संगम रहता है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल छट जाते हैं, कभी हल्की सी वर्षा आ जाती है। इसलिए मौसम संबंधी अधिकारी जो सूचनाओं पर ध्यान देना है आपको और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है, यात्री की जिम्मेदारी है। हम जो आकाशवाणी का ये उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो पर्पज़ है, ये यही है कि हम प्रशासन और आपके दरमियान एक पुल का काम करें, ठीक है? एक पुल का काम करें यात्रा के दौरान, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि पवित्र ही रखें इस मार्ग को, पवित्र गुफा को। जिस तरह का आप एक यात्रा के दौरान, जैसा कि हमने खुद देखा कि यात्रा के दौरान प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो कम से कम आपको करना चाहिए, वहाँ श्राइन बोर्ड द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना ही करें तो अच्छा है। कपड़े का एक बैग अपने साथ रख सकते हैं आप, उस पवित्र गुफा को आप मेहरबानी करके जो है वो गंदा ना करें। यात्रा के दौरान प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो कम से कम करना भी हम सबका जो है कर्तव्य है। यह पवित्र
पवित्रता, हिमालय केवल हमारी आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति की अनमोल विरासत भी है, ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ

भी संभव हो कचरे को जो है निर्धारित डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि वहाँ सेग्रीगेशन का एक सिस्टम लगा हुआ है कि आपको गीला कचरा कहाँ डालना है और सूखा कचरा कहाँ डालना है। बाद में उसको वहाँ एक प्रोसेस किया जाता है एक तरीके से, बाद में उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको प्रोसेस करने में। तो ऐसे में आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। देखिए ना, आप एक श्रद्धा और आस्था लेके जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, सफाई बहुत, पहले सफाई है बाद में सब कुछ होता है। समझ लीजिए कि प्रकृति को उतना ही पवित्र छोड़कर लौटना चाहिए जितनी पवित्रता के साथ हम उसके दर्शन करने जाते हैं बाबा बर्फानी के। हर साल देखिए हजारों वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रेस्क्यू टीम्स और सेवा समितियां दिन रात एक ही उद्देश्य से काम करती हैं ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाला हर श्रद्धालु सुरक्षित रहे। ये सिर्फ प्रशासन का प्रयास नहीं होना चाहिए कि हम ये सब करें। प्रशासन तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें अप्लाई करना है, खुद में चेंज लानी है। ये एक साझा संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जहाँ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और इस भावना के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा दुनिया की सबसे अनोखी और प्रेरक तीर्थ यात्राओं में अपना जो है विशेष स्थान बनाए हुए हैं। फिलहाल 9 बजने को हैं, आगे हम चलेंगे बाबा बर्फानी के दोनों पवित्र मार्गों की, और हम जानेंगे पहलगाम मार्ग और बालतल मार्ग की जो विशेषताओं के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, उनके मुख्य पड़ाव, रास्ते में उपलब्ध सुविधाएं, लंगर कह लीजिए, उसके साथ साथ आवास, पिट्ठू, पालकी जिसमें आप ऊपर चढ़ाई करते हैं, आप जाते हैं, और पूर्ण सेवाओं के बारे में भी बात करेंगे ताकि जो श्रद्धालु यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या एक जोश लेके बैठे हैं घरों में आने के लिए तैयार हैं, उन्हें एक स्पष्ट और उपयोगी जानकारी मिल सके। फिलहाल एक रुद्र सूक्तम आपके लिए पेश करते हैं।

0: अपने संवाददाताओं से बात होती रहती है और हमारा जो एक प्राचीन मार्ग होता है पहलगाम नुनवन का, वहाँ से इस वक्त हम जुड़ रहे हैं एस तारिक साहब से। तारिक साहब, खैर मकदम करते हैं आपका इस अमरनाथ के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया अमित साहब, विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। तो आज 57 दिनों पे मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का बाजाबता आगाज हुआ।
0: जी
1: आज पोफटे प्राचीन मार्ग पहलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर और उनके हमरा थे एसएसपी अनंतनाग, कैंप डायरेक्टर, श्राइन बोर्ड के अर अधिकारी ने जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को नुनवन बेस कैंप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनके साथ सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ पहलगाम के मुकामी लोगों ने ट्रेडर बॉडीज, होटलियर, मुकामी एनजीओ और दीगर लोगों ने यात्रियों को गर्मजोशी से गुफा के ओर अलविदा किया। बाबा बर्फानी के भक्तों की यात्रा उत्साह, आस्था और सफलता के साथ जारी है। हिमालय की चोटियों से जो मैं अभी देख रहा हूँ, सुनहरी शाहों के उभरने के साथ साथ मौसम अबरालू तो है लेकिन बहुत खुशगवार, हल्की हल्की बारिशों के बीच में ही सुबह जो काफिला निकला है वो बम बम भोले नारों की झनकार में आज सुबह 4 बजे नुनवन आगाज शिविर से तकरीबन 2,510 संख्या में भक्तों पे मुश्तमिल ये जत्था गुफा के ओर रवाना किया गया। तो आपको बताता चलूं कि नुनवन बेस कैंप से 13 यात्री 16 किलोमीटर दूर चंद्रवारी से पंचकरण और दीगर लवाजमात के बाद गेट नंबर 2 से आगे पड़ाव शीशनाग और पंचतरणी की तरफ बाजाबता अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। यहाँ से 11 बजे तक यात्रियों की कुल तादाद रजिस्ट्रेशन की जाएगी। चंदनवारी तक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है नए यात्रियों के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध रखे हुए हैं। तो हिमालय पहाड़ी मार्गों ससरन, पिशोटा, जोजबाद, नागाकोटी से गुजर कर तीर्थ यात्री दोपहर तक शीशनाग और वारबल, महागुंस्टा, पपीपल ये रास्ते पंचतरणी पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से शीशनाग और पंचतरणी में जो आज की श्रद्धालु है रात को विश्राम करके कल सुबह गुफा के ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। कल गुफा में मौसम शिवलिंगम का दर्शन करके जो मौजूद शिवलिंगम में दर्शन करके शिव भक्ति में मगन रहेंगे। इंतहाई सुरक्षा के साथ साथ हर जगह पे खाने पीने के लिए लंगरों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई है। तो प्रशासन के द्वारा नुनवन बेस कैंप यात्रा वे आए हुए भक्तों के आराम और खाने पीने की सभी सुविधा उपलब्ध रखी गई है। लंगरों में हाइजेनिक खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है और आराम और व्यायाम के लिए खेमों, टेंटों और हटों का भी इंतजाम अच्छे से रखा गया है। यात्रा प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी यात्रा की सुविधा के लिए जगह जगह उपलब्ध है। यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सफरी गाइडलाइंस के लिए जगह जगह पे निर्देश साइन बोर्ड लगाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो उनके अधिकारी यात्रा मार्ग तथा कैंपों पर हर मेडिकल सुविधा और मुफ्त अद्वियात के साथ मौजूद है। यात्रा को स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़कर सफाई सुथराई के लिए सैनिटेशन विभाग के तो सफाई कर्मचारी दिन रात काम में लगे हुए हैं ताकि माहौल को भी आलूदा से पाक रखा जा सके। तो इसी तरह मौसम विभाग जो जिनका सबसे बड़ा भाग होता है वहाँ की सूचना के मुताबिक यात्रा ट्रैक में मौसम अबरामद होने की इतला है और इस वक्त मौसम इंतहाई सुहाना है। इस वक्त पहलगाम में 19 डिग्री तापमान दर्ज है तो दिन को 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो काजीगुंडा पवित्र गुफा जाने की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की कई व्यवस्था रखी गई है। जदीद तरीन आलात से लैस सुरक्षा बल के जवान और अन्य एजेंसियां दिन रात गश्त कर रहे हैं ताकि यात्रा पुरमन और सफलता के साथ कल्चर की तर्ज पर मुख्तलिफ विभागों सरकारी जो सरकारी विभागों हैं उनके अधिकारियों के दरमियान तालमेल यात्रा की देखरेख की जा रही है। तो आपको ये भी बताता चलूं कि इस वर्ष की यात्रा के लिए तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है जो अभी भी जारी है। जी।

बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका तारिक साहब, आपसे दोबारा बात होगी, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से ये थे हमारे संवाददाता एस तारिक, और इनका कहना है कि अभी जो तापमान है वो 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है और दिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक चला जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी कम है, यानी आप आसानी से अपना जो सफ़र है वो जारी रख सकते हैं। तारिक से बात करने से पहले हम रूट्स की बात कर रहे थे, हमारा जो प्राचीन मार्ग है पहलगाम का, वहाँ से जब आप निकलते हैं तो आप पहले सीधे चंदनवाड़ी पहुँचते हैं, उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पिशू टॉप पहुँचते हैं, उसके बाद आपको पहुँचना होता है जोजीबल, जोजीबल से आप पहुँचते हैं नागाकोटी, नागाकोटी के बाद आपको चलना होता है 9 किलोमीटर, खड़ी चढ़ाई आपको करनी पड़ती है और आप पहुँच जाते हैं शेषनाग। शेषनाग से चंद किलोमीटर के फासले पर वारबल आता है और वारबल से महागुना स्टॉप, जो 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, और उसके बाद सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो पाबीबल माना जाता है पहलगाम के रास्ते में, और पाबीबल से यानी पिशू टॉप से पाबीबल तक का जो रास्ता है उसमें आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, हालांकि उतना बालतल जितना कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चढ़ाई करने में मुश्किल तो आती ही हैं। पाबीबल से आप समझ लीजिए 6 किलोमीटर तक का रास्ता है पंचतरणी तक, लेकिन ये जो रास्ता है ये आपको नीचे जाना इसमें पड़ेगा, उसमें आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा पंचतरणी से, लेके आप पहुंच जाते हैं संगम। फिलहाल आप रुकिए संगम पे, संगम पे हम रुकते हैं और हम पहले चलते हैं बालतल। देखिए बालतल में नीलग्राट, जहाँ से हमारा हेलीपैड जाता था, अभी ये सिलसिला फिलहाल बंद है, देखते हैं प्रशासन का क्या निर्णय होता है, लेकिन वहाँ का जो मुख्य हमारा पड़ाव पड़ता है वो बालतल का जो बेस कैंप है, वहाँ से आपको 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप दुमेल पहुँच जाते हैं, उसके बाद दुमेल से आप 5 किलोमीटर चल के बरारी मार्ग पहुँच जाते हैं, और समझ लीजिए कि दुमेल से आपको सीधा संगम तक नीचे जाना पड़ेगा, इसमें आपको कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप आराम से दुमेल से कह लीजिए कि 5 किलोमीटर बरारी मार्ग चल के थोड़ा सा आपको इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसके बाद बरारी मार्ग से आप सीधा जब संगम जाएंगे तो इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी, आप अच्छे से चल सकते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं संगम, यानी ये दोनों रास्ते संगम में मिल जाते हैं, जो बालतल से अगर आप आते हैं तो भी ये संगम से मिलता है, और अगर आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आते हैं तो भी ये संगम के मकाम पर मिलता है। संगम के बाद आपको खाली एक ही, केवल एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा होली केव तक, यानी पवित्र गुफा तक आपको एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा। ये दोनों रास्ते संगम में मिलते हैं, चाहे आप बालतल से आते हों चाहे आप पहलगाम से आते हों। तो संगम से लेके होली केव तक ये जो फासला है ये 3 किलोमीटर का है, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, तो आप पहुंच जाते हैं होली केव। होली केव में आप बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं उसी हिसाब से आपको चलना होता है, वापस कहाँ पहुँचना होता है आपको, किस बेस कैंप में आपको ठहराया जाएगा, और अगली सुबह आपको अपने घरों की ओर रवाना कर दिया जाता है। फिलहाल आपके लिए गायत्री मंत्र पेश करते हैं।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है

अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवाह। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योनः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो योनः प्रचोदयात की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं, आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः, अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है अपनी चौथी

0: तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा, इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति चेतनावस्था सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का, इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा, 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की, शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें, तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हो वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति।
1: श्रोताओं, फिलहाल के लिए हम ये गायत्री मंत्र यहीं पे रोक लेते हैं। 9:25 हो रहे हैं। उर्दू समाचार के लिए आपको हम लिए चलते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियोज।
2: श्रीनगर है खबरों का बुलेटिन लेकर, मैं आरिफ हुसैन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई तकाईची ने पाकिस्तान की सरहद पर दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबरा इजलास के बाद एक मुश्तरक बयान में दोनों लीडरों ने

जी हाँ श्रोताओं, एक गायत्री मंत्र आपने सुना। आप जानते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुछ मंत्रों को विशेष स्थान प्राप्त है, जिनमें गायत्री मंत्र का नाम सर्वोपरि माना जाता है। हजारों वर्षों से ये मंत्र श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का एक प्रतीक बना हुआ है। इसका संदेश सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और मानव कल्याण की प्रेरणा भी देता है। आपने अभी सुना हिंदू धर्म का अति पवित्र और प्राचीन गायत्री मंत्र। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसे वैदिक परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक माना जाता है। गायत्री मंत्र का केंद्रीय संदेश है।

ज्ञान, विवेक और सद्मार्ग की प्रेरणा। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें और हमें सत्य, धर्म और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए

0: उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने

0: करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना

0: सदा।
1: जी हाँ, विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बहलगाम, 100.1 डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। यात्रा जो है वो, उसका जो सिलसिला है वो जारी है और वक्त जो है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की और रवान दवा है। मौसम सुहाना है और ये एक अच्छी बात है कि आज के इस मौसम में, अगर जो मौसम अबर आलूद ही है, 22 डिग्री तक जो तापमान है वो जा सकता है, लेकिन आज जो भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करेंगे उनके लिए ये अच्छी बात है कि एक अच्छे मौसम में, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है हिमालय की, तो ऐसे में बहुत पसीना आता है, पसीना छोड़ जाता है, उस हिसाब से आपको फिर पानी का इनटेक भी करना पड़ता है। इस लिहाज से एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप आज अच्छी यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ भजन सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बातचीत करते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें प्राचीन मार्ग पहलगाम से भी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हम दस्तियाब हैं डीटीएच पर और इसके साथ साथ आप हमें वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज जो जत्था, जो काफिला घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, उनकी संख्या थी 3865। जी हाँ, ये वो काफिला है जो दोनों मार्गों से घाटी की ओर रवाना कर दिया गया है। इनमें से बालतल की ओर 1499 जाएंगे और बाकी जो बचे हुए भक्त हैं वो प्राचीन मार्ग पहलगाम से अपना जो सफ़र है वो जारी रखे हुए हैं और इन्हें कुल मिला के 208 वाहनों में घाटी की ओर रवाना कर दिया गया। तो आज का जो मौसम है वो सुहाना है, मौसम अबर आलूद है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। एक अच्छा दिन आपके लिए हो सकता है क्योंकि जब आप हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपको पानी का इनटेक बहुत करना पड़ता है और उसमें एक परेशानी ये होती है कि पानी बार बार भरना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। तो आज आपको ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आकाश में बादल छाए हुए हैं, मौसम में उतनी तमाजत नहीं है, तो आप अच्छे से बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मजीद क्या कुछ होता रहेगा, क्षण क्षण की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए FM बालतल के संग, हम बैठे हैं आपको अपडेट करने के लिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी।

करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ

जी हाँ श्रोताओं, आपको बताते चलें कि सुबह जब हमने गांधरबल के हमारे संवाददाता रहीम रिजवान से बात की तो उनका यही कहना था कि आज जो शेड्यूल के मुताबिक भक्तों को आगे बढ़ने की अनुमति मिलनी थी, जो फिर वर्षा हुई उसके कारण थोड़ा वो बाधित हो गई और बाद में उन्हें 7:20 पर, सुबह 7:20 पर दुमेल के एक्सेस गेट से आगे पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली। और रिजवान ने जो हम तक खबर पहुंचाई है, जो आदादोशुमार हम तक पहुंचाया है, उसके अनुसार आज 4,903 जो भक्त हैं उन्हें दुमेल एक्सेस गेट से आगे बढ़ने की अनुमति मिली। इनमें से पुरुषों की संख्या है 3,136 और महिलाएं 1,660। इनमें से बालक 14, साधुज 10, साध्वीज 3 और ट्रांसजेंडर्स जो है, इनमें से ट्रांसजेंडर्स कोई नहीं। और ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो दस्ता है उनकी संख्या है 80। कुल मिलाकर 4,903 भक्त जो है आज बाबा बर्फानी के दर्शन पाएंगे अमरनाथ यात्रा के इस बालतल बेस कैंप से। और थोड़ी सी वर्षा के चलते ये जो यात्रा है बाधित हो गई थी, लेकिन बाद में 7:20 पर, जो कि असल में सुबह 4 बजे के आसपास आगे बढ़नी थी, उन्हें फिर 7:20 पर आगे बढ़ने की अनुमति मिली। तो मौसम अभी मिलाजुला संगम है धूप और छाँव का। आज मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार कश्मीर में मौसम जो है कुछ दिन पहले ही एंटर कर गया है, तो ऐसे में मौसम की कोई गारंटी नहीं है। आज उनका कहना था कि मौसम जो है उसका मिलाजुला संगम रहेगा, धूप और छाँव का खेल रहेगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छी बात है। जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, कि एक नॉर्मल 25 डिग्री के आसपास, 23 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा सकता है, उसमें आप अपनी यात्रा मुकम्मल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए भक्ति संगीत पेश कर रहे हैं। भक्ति संगीत के उस पार आपसे कुछ और बात करेंगे। हमने इससे पहले कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और चिकित्सा के हवाले से जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आपका वो प्रोसेस रहता है, उस हवाले से हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। आगे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक और भजन आपके लिए पेश करते हैं।

0: श्रोताओं, हमारे संवाददाता इमरान नायकों ने चंद भक्तों से बात की है जो हमारा एकमात्र ट्रांजिट कैंप है श्रीनगर में। वहाँ कुछ भक्तों से बात की है और उनका क्या कहना है इस यात्रा को लेकर, वो कितने उत्साहित हैं इस बारे में, उनकी जो टिप्पणी है, उनकी जो इनपुट्स हैं वो सुनते हैं।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
2: लखनऊ से आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी 19वीं यात्रा है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आप लोगों का प्रेम हम लोगों को फिर से एक बार खींच लाया है कश्मीर में। और यात्रा में भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं बाबा के भक्त के बाबा के दर्शन करने के लिए, और आगे भी ऐसे ही कारवां चलता रहे ऐसी मनोकामना ईश्वर से करते हैं। और कश्मीर की खुशहाली के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगेंगे कि कश्मीर की खुशहाली में दिनों दिन और तरक्की हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म हमारे यहाँ का बढ़े और लोग आकर कश्मीर की खूबसूरती को देखें, यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ के लोगों के दिलों को जाने समझें। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
3: मैं गुजरात सूरत से आई हूँ और यहाँ पर पहली बार आई हूँ और खोलने के द्वारा हमें बहुत बहुत सफल रहा। जितनी भी यात्रा हमने की है यहाँ पर बहुत ही आनंद में रही। यहाँ पे कोई भी अमान्य नहीं है, यहाँ पर सभी सामान्य और मान्य रख रहे हैं।
4: मेरा नाम है राजमुड़ी दत्ता, वी आर फ्रॉम कर्नाटका बेंगलुरु। एज ऑफ नाउ ऑल थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर रनिंग इन अ बेटर वे। दे हैव डन अ बेटर अरेंजमेंट इन लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टे, in terms of food, like what we call as bandara, they have very lovely food. They served us good coffee, lunch, all things are

0: great. We would request all the pilgrims to come and have a must visit to Amarnath Yatra.
1: And weather condition is also very favorable. And hygiene is also very good, and it has been taken care very well. Administration is doing very well. Thank you. Good for come here, enjoy the shrine, have a good pilgrimage.
2: What Punjab sir? बहुत अच्छी सुविधा है. बस यही मैसेज है कि बाबा की कृपा से मौसम साथ दे, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी, बारिश, लैंडस्लाइड ना हो, जितने दिनों की यात्रा है वो अच्छे से निकले.
3: अब कुछ और विचार हमारे साथी, हमारे संवाददाता एस तारिक ने नुनवन बेस कैंप में रिकॉर्ड किए हैं. जानते हैं बगतू में कितना उत्साह था, वो आप तक पहुंचाते हैं.
4: बगैर डर भय का आए,
5: ऐसा
4: नजारा फिर और कहीं देखने को नहीं मिला. ये विश्व स्तर का मेला है, विश्व स्तर का यहाँ भंडारा है. यहाँ पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ. आप सुरक्षा के दृष्टि से और भी किसी भी दिशा आपको किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत होता हो, शारीरिक कोई कष्ट होता हो, यहाँ के पुलिस पूरा तत्पर रहते हैं, आपका हर सुविधा का ख्याल रखते हैं. इसलिए
3: जी हाँ, भक्तों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है. एस तारिक हमारे संवाददाता नुनवन बेस कैंप से जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनने ये बाइट हम तक पहुंचाई थी. चलिए आप तक पहुंचाते हैं चंद और ट्रैक.

देवाधिदेव महादेव आशुतोष और धरदानी करुणा वरुणा लई परात पर ब्रह्म श्याम सदा शिव जी भगवान शिव की कथा में आइए हम सब मिलकर रुद्राक्ष की महिमा सुने। भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण लिखा है जिसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक है। शिव महापुराण में श्याम सदाशिव जी भगवान की बड़ी महिमा गाई गई है जिसमें भगवान शिव जी का लिंग का महात्मा, भगवान शिव की पूजा कैसे करें, किस तरीका से करें, कौन कौन से मंत्र है और शिव के संबंध में बहुत कथा लिखी गई है। इसमें भस्म की महिमा, शिव नैवेद्य की महिमा, बिली की महिमा,

और ऐसे तो शिव महापुराण में बहुत महिमा। सती प्रागट्य की कथा है, शिव सती का विवाह की कथा है, पार्वती जगदम्बा प्रागट्य की कथा है, शिव शिवा का विवाह की कथा है, गणेश कार्तिकेय ज्योतिर्लिंग, ऐसे ऐसे बहुत कथा लिखी गई है, कोई नहीं गा सकते हैं। असीत गिरी शमम शात कज्जलम सिंह।

ऐसी ऐसी सामग्री लेकर अहर्निश सरस्वती जी भी गुणगान लिखे, फिर भी भगवान शिव जी की गुणगाथा नहीं लिख सकते। आत्मदर्शी पुरुषों ने भी भगवान शिव जी का साक्षात्कार किया, उन महात्माओं भी इस महिमा भगवान भोलेनाथ की महिमा नहीं गा सकते, तो हम कौन है? हमारी कोई विषाद नहीं। ऐसे भगवान श्याम सदा शिव जी की बड़ी भारी महिमा शिव महापुराण में गाई गई है। आइए इसमें से रुद्राक्ष की महिमा हम गाए। हमारे भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। ऐसे शिवपुराण का विधान है, केवल रुद्राक्ष धारण करने से ही एक चौथाई शिव भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से एक चतुर्थांश शिव भक्ति, भस्म धारण करने से एक द्वितीयांश शिव भक्ति, और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से तीन चतुर्थांश शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करे तो संपूर्ण भक्ति मिल जाती है। केवल रुद्राक्ष धारण करने से इतना लाभ होता है। तो रुद्राक्ष संबंध में शिव महापुराण में कथा लिखी, और ये सब कथा सुत जी, शौनक आदि ऋषि मुनियों प्रयाग तीर्थ में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम है, वहां ए त्रिवेणी के तट पट पर एक कथा गाई गई है। सुत जी कहते हैं, भगवान शिव ने शिवा की पास भी ये महिमा गाई गई है। ऐसे तो बहुत सम्मान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने मान संतान नारद ऋषि की पास ये कथा कहते हैं, और सनकादिक ऋषि मुनियों भगवान वेद व्यास की पास ये कथा कहते हैं। ऐसा भी बहुत विधान गाया गया है। रुद्राक्ष संबंध में ऐसी कथा है, एक दफा भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी करुणा वरुणालय प्रात पर ब्रह्म भगवान शिव जी जंगल में तप करने के लिए गए हैं। तप के जो देव है, तपस्या के जो देव है, तप जिन्हों को बहुत प्रिय है, जंगल में जाकर पद्मा

लगाकर ध्यान लगाकर एकांत में और नितांत एकांत में आसन जमाए के भोलेनाथ बैठे और तप करते। तप के देव है जिसको तप बहुत प्रिय है। संसार में जो तप नहीं करता है उसका पत हो जाता है। तप शब्द ही ऐसा है, उसको उलट दो, तप और पत अपने आप पत हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर अगर तप न करे, भक्ति न करे, भजन न करे तो उसका पत हो जाता है, अपने आप ही उसका पतन होता है। भगवान शिव तो तपस्या के देव है। तप जिसको बहुत प्रिय है ऐसे भगवान शिव जी जंगल में बैठे हुए तप कर रहे हैं। और जो अपना ही सहज स्वरूप है, अपना ही भोलेनाथ का, भोलेनाथ का अपना स्वरूप कौन है? ओमकार ही ओम भोलेनाथ का अपना अपना अपना स्वरूप। और अपना ही नाद गाने लगे, अपना ही गीत गाने लगे, जीव को भी ऐसा ही करना चाहिए। शिव की अगर भक्ति करना हो तो हमारे जो परात्पर ब्रह्म भगवान शिव है उसकी धुन गुन गुनाना चाहिए। इसलिए तो हम गाते हैं ओम शिव परात् पराशिव ओंकारा शिव तव शरणम्।

ओमकार का भोलेनाथ जंगल में जाकर जाप करने लगे। समय व्यतीत होते हुए एक दफा भगवान भोलेनाथ की अपने सहज ही समाधि खुली, आंखें खुल गई और आंखों में से सहज

जी अश्रु के दो बिंदु पृथ्वी में गिर पड़े और भोलेनाथ का यह प्रसाद अपने आप ही सहज ही जो अश्रु गिरा उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और वृक्ष में सुंदर फल आया। भोलेनाथ ने देखा, ऐसा है, मेरे आंख में से जो अश्रु गिरे और उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और फल आए। भोलेनाथ ने देखा, आशीर्वाद का धो दिया, जा तेरा नाम रुद्राक्ष रहेगा, मेरी आंखों में से जो गिरे उसमें से जो प्रकट हुए वो फल मुझे भी बहुत प्रिय रहेगा और जो कोई वो पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा और नाम दिया है रुद्रा। भोलेनाथ ने तप किया और तप में से जो अश्रु गिरे उस अश्रु में से उस प्रसाद में कुछ न कुछ चीज हमें मिल जाती है और शास्त्रों में गाया भी गया।

शंकर जी के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ वृक्ष रुद्राक्ष, वृक्ष रुद्राक्ष के फल का नाम रुद्रा, वृक्ष का नाम भी रुद्रा, फल का नाम भी रुद्राक्ष। रुद्र की आंख में से गिरा रुद्र वत्ता अक्ष रुद्र मैंने शी, जो दुख का जो मूल होता है उसको सहार करने वाले भोले बाबा का नाम रुद्र। अक्ष मैंने गिरा नाम पड़ा है रुद्राक्ष। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जो कोई रुद्राक्ष पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत लाभ होगा, और जो कोई मुझे भी चढ़ाएगा और रुद्राक्ष की कोई भी पूजा करेगा उसकी महिमा उसका फल कोई नहीं गा सकता। ऐसी रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। कम से कम एक रुद्राक्ष पहराया, एक ही रुद्राक्ष हम पहरे। भोलेनाथ का ये प्रसाद है और एक रुद्राक्ष पहरे हमारा सब ओर से सब रीति से सब तरीका से ठीक ठाक हो जाता है और जो कोई हमारी मनोकामना है वो सब पूर्ण होगा। ऐसे रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा। फिर भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दिया सारे ब्रह्मांड में बहुत जगह पर ये प्रकट हुए पृथ्वी लोक, स्थल का भी नाम दिया गया है लेकिन बहुत जगह पर है। ऐसे रुद्राक्ष का चार प्रकार गाया गया, सफेद रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का और काला रंग का। ऐसे हमारे समाज की व्यवस्था भी चार प्रकार की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऐसे अपने अपने जाति के मुताबिक रुद्राक्ष लगाए तो और फल मिलता है। अगर ऐसा न भी करे और जो प्रसाद मिले उसमें लगा ले तो भी लाभ लाभ लाभ होता है, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ। रुद्राक्ष पहनने से मुक्ति मिल जाती है, रुद्राक्ष पहनने से श्याम सदाशिव भगवान शिव जी का दर्शन हो जाता है, रुद्राक्ष पहनने से धन दौलत माल मिलकर सब मिल जाती है, रुद्राक्ष पहनने से बहुत सुख शांति और आनंद मिलता है, रुद्राक्ष पहनने से

कहीं हमारे दर्द भाग जाते हैं, रुद्राक्ष पहनने से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है, रुद्राक्ष पहनने से हमारा मनोबल दृढ़ हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है और रुद्राक्ष पहनने से हम बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत महिमा

उसमें ऐसी महिमा गाई गई है। काशी नाम का एक नगर था और उस नगर में एक राजा रहते थे। वो भी राजा शिव भक्त थे, पहले के राजा महाराजा क्षत्रिय बहुत शिव भक्ति करते थे, भाव भक्ति से, प्रेम से। एक दफा ये राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने फिरने के लिए गया। जंगल में बहुत दूर दूर तक पहुंच गया और वहां एक दृश्य देखा है राजा। कई भूत प्रेत सब आनंद करते थे, आनंदोत्सव मनाते, आनंद में सब नाचते थे, गाते थे। राजा ने देखा ये सब भूत प्रेत है, सब आनंद करते हैं। राजा ने पूछा ये सब क्या बात है। सबने दिखाई, राजा हमारी पुत्री का ये विवाह हो रहा है, कल ही विवाह होने वाला है और उस उत्सव का हम आनंद मनाते हैं। राजा ने पूछा तो वो किसके साथ उसका विवाह होगा और ये सब क्या है। सबने दिखाया, आपके नगर में एक युवक रहता है और कल घोड़ा पर बैठकर उसको पानी पाने के लिए जाएगा और एक स्थल बताया, उस स्थल पर वो गिर

जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसको हम भूत बनाएंगे और हमारी ये पुत्री का विवाह वो भूत के साथ हम करवाएंगे। राजा को ये सुनकर तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये सब बात है। राजा आए अपने नगर में और जो समय बताया था, जो स्थल बताया था, दूसरे दिन राजा वहां खड़ा हुआ और वो ही युवक घोड़ा पर बैठकर पानी पाने के लिए जा रहा था, वो ही स्थल आया। ठोस लग गई, घोड़ा गिर गया, युवक गिर गया, युवक की मृत्यु हो गई। राजा ने ये सब दृश्य देखा, राजा का तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बात चलो हम जंगल में देख जाए और देखे। फौरन ही राजा जंगल में आए और वहां सब भूत प्रेत जो परिवार थे सब रोने लगे, रुदन करने लगे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे आनंद की बात है, और क्या है सब, कल जो बताया वही तो हुआ है सब, और सभी रुदन कर रहे, क्या सब बात है, कोई समझ में नहीं आती क्या। राजा ने सबको पूछा, क्या कुछ कोई तकलीफ है, क्या है कुछ, आनंद की बात कर रहे थे और आज ये सब रोने लगे, क्या है सब। सब भूत प्रेतों ने बताया, हमारा जो आयोजन था उसको भूत बनाने का, लेकिन जिस स्थल पर उसकी मृत्यु हुई उस स्थल के भीतर पृथ्वी के अंदर एक रुद्राक्ष था और रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो उसको हम भूत नहीं बना सके। और भगवान भोलेनाथ के दूत आए, बबम बम बबम बम बबम बम गाते हुए, अलग अलग अलग पुकारते हुए आए और हमारी कुछ सुनी नहीं। फौरन ही उस व्यक्ति को लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचे और राजा हमने प्लान किया था उसको भूत बनाने के, लेकिन हमारी वहां कुछ चली नहीं, रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो भोलेनाथ के दरबार में वो चले गए। राजा ने ये सब बात सुनकर बहुत आनंद हुआ, ओ ये सब रुद्राक्ष की ऐसी महिमा। फिर राजा ने काशी नगर में आकर ऐसा आदेश दिया, चारों रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ बोया जाए और सब रुद्राक्ष पहरे भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाए, उसकी पूजा करे, शिव की महिमा बढ़ाए, शिव की महिमा गाए और सब रुद्राक्ष पहने, चारों ओर आदेश दिया। तो देखिए ये रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष पहरा नहीं है, देखा नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, वो पृथ्वी में था, उस पर जिसकी मृत्यु हुई तो वो भूत नहीं बना, भूतनाथ के दरबार में।

स्पर्श नहीं किया है। वो पृथ्वी में था, उस पर जिसकी मृत्यु हुई तो वो भूत नहीं बना, भूतनाथ के दरबार में चले गए। कैसी रुद्राक्ष की महिमा है। हमारे भोलेनाथ को ये रुद्राक्ष बहुत प्रिय है और रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। श्री महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुख गाए गए, 14 प्रकार, 14 मुख वाले या 14 प्रकार, ऐसी महिमा गाई गई। रुद्राक्ष उपनिषद में तो 21 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए, श्री महापुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए हैं। उसमें से हम एक एक का थोड़ा विस्तार से देखे क्या महिमा है। एक मुख वाला रुद्राक्ष जो पहरेगा, उसकी पूजा करेगा, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएगा, उस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, उसको मोक्ष मिलेगा, धनलक्ष्मी मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा और सब कामनाओं पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्महत्या का अगर पाप किया गया हो, ऐसा बड़ा पाप जो किया गया हो, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका सब पाप भस्म हो जाए। एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। वो साक्षात शिव स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसे संतों के मुख से सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल में है। शिवरात्रि के

कल मत खरीदना और मिलता भी नहीं है। तो एक मुखी रुद्राक्ष की ऐसे बड़ी भारी महिमा गाई गई है और दो मुख वाले रुद्राक्ष गौरी शंकर के स्वरूप पे माने गए। महादेव का स्वरूप है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है, शिव पार्वती स्वरूप है, शिव शक्ति दोनों साथ में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दो मुखी रुद्राक्ष की भी बहुत महिमा गाई गई है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष का प्रभाव तो और ही है और सर्व विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। अगर विद्या की प्राप्ति करना हो, हम सब विद्या के पिपासु, हमारे धर्म में बुढ़ा हुए फिर भी विद्या की साधना कर, उपासना कर, और वही विद्या से साविद्याया विमुक्तये, साविद्याया विमुक्तये। हे देवाजी देव महादेव, हमें ऐसी विद्या दो, हमारी मुक्ति हो। तीन मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से विद्या मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, पहनने से उसका स्पर्श होने से शरीर में से कोई भीतरी ताकत प्रकट हो जाती है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से बहुत ज्ञान हो जाता है। छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना गया है। तो ये तीन मुख वाला रुद्राक्ष की महिमा, और चार मुख वाला रुद्राक्ष जो ब्रह्मा रूप है, ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा गया है। एक मुख तो भगवान शिव जी ने भैरव के रूप में काटा गया, चार मुख बचा। जो चार मुखी रुद्राक्ष पहरेगा उस पर भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे। और चार प्रकार का हमारा जो पुरुषार्थ है वो उसको मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार प्रकार का जो पुरुषार्थ है वो चारे चार प्रकार का पुरुषार्थ मिलेगा। धर्म क्या है उसका पता हमें चलता है, और अर्थ क्या, काम क्या, मोक्ष क्या, ये सब का हमें पता चल जाता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष की ऐसी बड़ी भारी महिमा गाई गई, संतति की प्राप्ति भी हो जाती। अगर पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति, पुत्र ही न कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्र की इच्छा हो तो शिव का प्रसाद रुद्राक्ष पहरने से पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती। पांच मुख वाला रुद्राक्ष वो पंचानन भगवान शिव का स्वरूप माना गया। पांच मुख वाला रुद्राक्ष जो पहरेगा उस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगी, पंच मुख वाला भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएगी। पंचानन ठहरे हैं हमारे भोले बाबा, और मुक्ति का भी चार पांच प्रकार माना गया, चार बत्ता एक पांच, मुक्ति का भी पांच प्रकार है। और पांच प्रकार की मुक्ति भी पांच मुखी रुद्राक्ष पहरने से मिल जाती है। और ए रुद्राक्ष पहनने से हमारा जो समय है, हमारा हमारी ये जो सांस है, ये सब बहुत कीमती हो जाती है। और एक एक पल, एक एक बात हमारी बड़ी भारी कीमत वाली हो जाती है। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने गाया है, क्या तेरी घड़िया अमूलक जाय, मुख से रटले नमः शिवाय।

फेरी घड़िया अमूलक जा। तो ये रुद्राक्ष पहनने से हमारा सब जीवन अच्छा हो जाता है, और मुख में से अपने आप ओम नमः शिवाय का गुंजन हो जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा गाई गई है। छह मुख वाला रुद्राक्ष जो कोई पहरेगा, भगवान शिव जी को चढ़ाएगा, वो रुद्र रूप बन जाएगा और सदानंद भगवान शिव जी का जो संतान है।

कार्तिकी स्वरूप बन जाए, चौमुख वाला होगा। दाहिने कर में पहरने का उसका बहुत महिमा है। ये धारण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। षडानन कार्तिकी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत शक्ति दे देते हैं। ये कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, षडानन स्वरूप माना गया है। छ मुखी रुद्राक्ष है वो, सात मुख वाला रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप माना गया है। काम देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे सब कामना भी पूर्ण हो जाती है, दान लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। सात मुख वाला रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष वो भैरव स्वरूप माना गया है। भैरव भी भगवान शिव जी के भ्रकुटी मां से उत्पन्न हुए हैं और काशी नगरी के अधिपति है और कोटवाली भी करते हैं, और जो जीव काशी नगरी में प्रवेश करता है उसका पाप का भक्षण हमारे भैरव जी करते हैं। और जो कोई पहरता है, अपने पास में रखता है, पूजा कोई भी करता है, उस पर भगवान भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आखिर में शिव के दरबार में पहुंचा देते हैं। ऐसे आठ मुखी रुद्राक्ष की भी बहु महिमा है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष नौ दुर्गा कालिका चामुंडा मां दुर्गा भवानी मंगला वैष्णव देवी का स्वरूप माना गया। जो कोई नौ मुखी रुद्राक्ष पहरेगा, अपने पास रखेगा, पूजा करेगा, उस पर नौ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। एक मां प्रसन्न होने से बालक का लालन पालन होता है और ठीक ठाक से वो बड़ा हो जाता है। मां की बड़ी ममता, भला कौन कह सके। और नौ मुखी रुद्राक्ष पहरता है उसको, उस पर तो नौ दुर्गा नौ मां ओ, और नौ जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, जीवात्मा का बहुत कल्याण और बहुत आगे बढ़ जाता है। जिस जिस पर मान प्रसन्न हुई जगदम्बा, उस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ तो प्रसन्न है, उसको तो प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस पर मां प्रसन्न हुई जगदम्बा आदिशंकी मां दुर्गा प्रसन्न हो गई, उस पर हमारे भोलेनाथ

जिस परमा प्रसन्न हुई, जगदम्बा आदि शक्ति माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई, उस पर हमारे भोलेनाथ ने तो अपना सहस्त्र कर रख दिया। तो नवमुखी रुद्राक्ष जो पहरेगा, उस पर आज शक्ति माँ भवानी नव दुर्गा प्रसन्न हो जाते। और बहुत फल, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया। सर्व कामनाओं तो सिद्ध होती ही है, लेकिन संपूर्ण आयुष्य वो भोग कर भगवान के दरबार में पहुंचता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से दुर्घटना नहीं होती, अपमृत्यु नहीं होती, और जो विधाता ने जो आयुष्य दी वो आयु संपूर्ण भोग कर पृथ्वी लोक में रहकर भगवान भोले भंडारी के दरबार में पहुंचता है। ऐसे 10 मुख की भी बड़ी भारी महिमा है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप भगवान शिव के स्वरूप माना गया। रुद्रों की संख्या ऐसे शास्त्रों में 11 भी है, रुद्रों की संख्या 11। 11 मुखी जो रुद्राक्ष पहनता है उस पर 11 रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत शक्ति ताकत दे देते हैं। ऐसे 11 मुखी रुद्राक्ष की भी बहु महिमा है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो कोई पहनता है रखता है उस पर 12 सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहां आदित्यों की संख्या 12 है, 12। एक सूर्य प्रसन्न हो जाए तो कितनी हमें ताकत दे देता है। तो हम पर 12 सूर्य प्रसन्न हो जाए, हम कहां के कहां पहुंच गए, हमको पता ना चले। ऐसे सुबह में जागृत होते हुए भी हमें सूर्य नारायण के अर्घ्य देना चाहिए।

हम कहां के कहां पहुंचे हमको पता ना चले। ऐसे सुबह में जागृत होते हुए भी हमें सूर्य नारायण के अर्घ्य देना चाहिए। द्वादश वो गायत्री मंत्र से अर्घ्य दे दे हमारे सूर्य भगवान, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाए। ऐसे बार मुखी रुद्राक्ष पहनने से द्वादश सूर्य हमारे पर प्रसन्न हो जाता है। ये द्वादश मुखी का ऐसा महिमा गाया गया है। तेर मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप माना गया है। सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, हमारा सब मंगल होता है और चारों

मुख वाला रुद्राक्ष की भी बड़ी बड़ी महिमा, 1 से 14 मुख वाला कोई भी रुद्राक्ष रखे पहरे भगवान शिव को चढ़ाए उसको बहुत लाभ बहुत पुण्य बहुत फल मिल जाता है। रुद्राक्ष पहले हम शिवरात्रि के दिन में सोमवार के दिन में कई समय प्रसाद में मिल जाए सिद्ध।

पतला, जीव शुद्ध हो जाता है, सब पाप भस्म हो जाता है, अशुद्धि हमारी भाग जाती है और जीव शिव बन जाता है और वो शिव के स्वरूप में शिवोहम शिवोहम शिवोहम के स्वरूप में वो नाचने लगता है, गाने लगता है। तो बस कम से कम हम एक रुद्राक्ष तो पहरे हैं, ऐसा शिव पुराण

अखंड, जो अखंड हो, जो खंडित न हो, वृक्ष पर पका हुआ हो और अपने आप छिद्र उसमें हो, जरा सा खंडित न हो, पानी में हम डाले तो नीचे हो जाए, तीरे नहीं, ऐसा भारी रुद्राक्ष हम पहरे। कम से कम एक रुद्राक्ष पहरने से हमको बहुत लाभ होता। शिव महापुराण में तो वो विद्वेश्वर संहिता में 25वां अध्याय में बहुत महिमा गाते हुए हमारे ऋषियों ने, वेदव्यास भगवान ने एक श्लोक लिखा है।

सभी आश्रमों एवं वर्णों तथा स्त्री और शूद्रों को सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करते हुए महादेव जय जय त्रिपुरारी हम गुनगुनाए गाए और ऐसे रटे बात।

श्रोताओं, चलते चलते मैं आपसे अब विदा ले रहा हूँ, लेकिन चलते चलते हेल्पलाइन नंबर, जो हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है इस वर्ष का अमरनाथ यात्रा 2024 का, वो

मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, यानी 9596990954। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। जी हाँ, AKASH आकाश VNI वानी BALTAL बाल्टल @gmail.com। आप बिला झिझक डरने के बगैर अपने जो आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रश्न हैं, वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं, ताकि हम जो अपना ये ट्रांसमिशन है ये बेहतर बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि हम आपके दरमियान एक पुल का काम कर रहे हैं, प्रशासन और आपके दरमियान हम एक पुल का काम कर रहे हैं। जिस तरह प्रशासन उच्च स्तरीय सहूलियतें आपके लिए फराहम कर रहा है, हम भी उसमें उनका साथ दे रहे हैं। और आपकी जो भी बात होगी, जो भी आपकी दुविधा होगी, आपकी कोई कठिनाई होगी, बालतल का जो मार्ग है उसको सफ़र करने में, या पहलगाम का जो प्राचीन मार्ग है वहाँ से सफ़र करने में, अगर आपको कोई दुविधा, किसी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, तो आप हमारे इस एकमात्र हेल्पलाइन नंबर और इस ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुँच सकते हैं। हमारा ट्रांसमीटर बालतल में लगा हुआ है, 100.1 MHz आप ट्यून इन कर सकते हैं। और अगर आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आ रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा एकमात्र ट्रांसमीटर है, 100.1 MHz आप ट्यून कर सकते हैं। तो बने रहिए FM बालतल के संग। मैं अब माइक्रोफोन हवाले करता हूँ मेरी साथी शाहिना ऋषि को। इस भजन के उस पार आप जुड़ेंगे शाहिना ऋषि के साथ।

0: श्रोताओ, पल पल की जानकारी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं जहाँ से आप समाचार समाप्त करेंगे।
1: गणपति सदगुण सदन करी पदन कृपाल जय जय जय।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक

मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्ध तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन

0: परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterparts Anae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Anae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase two of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sarnand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. Lok Sabha Speaker Om Birla has said for the creation of a developed India by 2047, developed Bengal is essential. Addressing the two-day orientation program for the newly elected members of West Bengal Legislative Assembly at the New Town Convention Centre in Kolkata, the Lok Sabha Speaker said today digital ecosystem and AI are being incorporated into the legislative houses.
2: ये समय डिजिटल का समय है.
3: दिस इज अ टाइम फॉर डिजिटल इनोवेशन एंड फॉर AI टेक्नोलॉजी. द डिजिटल पार्लियामेंट ब्रिंग्स डिबेट डिस्कशंस गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉज वेलफेयर इनिशिएटिव्स एंड बजट इन्फॉर्मेशन इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म. इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू बोथ द यूनियन बजट एंड द स्टेट बजट्स मेकिंग गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल अंडर द लीडरशिप ऑफ आर

0: Honorable Prime Minister, all government ministries have been brought together through the digital parliament. It enables citizens to stay informed about parliament proceeding, and consequently debates and discussion from across the country can be found in the digital parliament.
1: Charcha, debate, aapko wahan par milenge.
2: The annual Sri Amarnath Ji Yatra began this morning from both Pahalgam and Balthal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day long pilgrimage. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver in Canada. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California to book a place in the round of 16. Meanwhile, Portugal also advanced to the round of 16 after defeating Croatia 2-1 in their round of 32 match in Toronto, Canada. And with that, we end this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से आपसे मुखातिब है। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स पर। डीटीएच की आराधना सर्स न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए हम उपलब्ध रहते हैं, और साथ ही साथ आप हमें जैसे कि हमने अभी कहा कि वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जैसे कि अभी आमिर ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार फिर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है akashvanipaltal@gmail.com। जी हाँ, akash आकाश vani वानी baltal बालटल @gmail.com। आप हमें किसी भी टाइम आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ताकि हम आपका जो सुझाव हमारे लिए होगा, हमारे ट्रांसमिशन के लिए होगा, वो हम आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम अपने ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हम जुड़े हैं आपके साथ यहाँ पर आपके ही लिए। तो आप हमें किसी भी तरह, जो भी आपको लगे कि हमारे ट्रांसमिशन में भी जो भी आपको पसंद आए, या आपको ये सोचना पड़े कि यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ कोई भी मैसेज साझा कर सकते हैं। तो मेरे साथ साइका सलीम है। तो साइका जी,
4: जी बिल्कुल, हम भी इस विशेष प्रसारण द्वारा यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, और हर यात्री की सुखद यात्रा की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा का क्षण क्षण आपके लिए सुखद रहे।
3: जी हाँ शोधो, आपको ये भी बता दें, अगर आप दर्शन के लिए बालटल के मार्ग से जा रहे हैं, तो आप हमें ट्यून करें बालटल 103.7, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के मार्ग से जा रहे हैं, तो आप हमें ट्यून कर सकते हैं FM पहलगाम 100.1 पर।

देवाधिदेव महादेव आशुतोष अवधरदानी करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्याम सदा शिव जी भगवान शिव की कथा में आइए हम सब मिलकर रुद्राक्ष की महिमा सुने। भगवान वेदव्यास जी ने शिव महापुराण लिखा है जिसमें 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक है। शिव महापुराण में श्याम सदाशिव जी भगवान की बड़ी महिमा गाई गई है जिसमें भगवान शिव जी का लिंग का महात्म्य, भगवान शिव की पूजा कैसे करें, किस तरीका से करें, कौन कौन से मंत्र है और शिव के संबंध में बहुत कथा लिखी गई है। इसमें भस्म की महिमा, शिव नैवेद्य की महिमा, बिली की महिमा और ऐसे तो शिव महापुराण में बहुत महिमा। सती प्राकट्य की कथा है, शिव सती का विवाह की कथा है, पार्वती जगदम्बा प्राकट्य की कथा है, शिव शिवा का विवाह की कथा है, गणेश कार्तिकेय ज्योतिर्लिंग, ऐसे ऐसे बहुत कथा लिखी गई है। कोई नहीं गा सकते हैं। असीत गिरी शमम शात कज्जलम सिंध

ऐसी ऐसी सामग्री लेकर अहर्निश सरस्वती जी भी गुणगान लिखे, फिर भी भगवान शिव जी की गुणगाथा नहीं लिख सकते। आत्मदर्शी पुरुषों ने भी भगवान शिव जी का साक्षात्कार किया, उन उन महात्माओं भी इस महिमा भगवान भोलेनाथ की महिमा नहीं गा सकते, तो हम कौन है? हमारी कोई विषाद नहीं। ऐसे भगवान श्याम सदाशिव जी की बड़ी भारी महिमा

काशी महापुराण में गाई गई है। आइए इसमें से रुद्राक्ष की महिमा हम गाएं। हमारे भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। ऐसे शिवपुराण का विधान है, केवल रुद्राक्ष धारण करने से ही एक चौथाई शिव भक्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने से एक चतुर्थांश शिव भक्ति, भस्म धारण करने से एक द्वितीयांश शिव भक्ति और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से तीन चतुर्थांश शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करे तो संपूर्ण भक्ति मिल जाती है। केवल रुद्राक्ष धारण करने से इतना लाभ होता है। तो रुद्राक्ष संबंध में शिव महापुराण में कथा लिखी और ये सब कथा सुत जी, शौनक आदि ऋषि मुनियों प्रयाग तीर्थ में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का त्रिवेणी संगम है, वहां एक त्रिवेणी के तटपट पर एक कथा गाई गई है। सुत जी कहते हैं, भगवान शिव ने शिवा की पास भी ये महिमा गाई गई है। ऐसे तो बहुत सम्मान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने मान संता नारद ऋषि की पास ये कथा कहते हैं और सनकादिक ऋषि मुनियों भगवान वेद व्यास की पास ये कथा कहते हैं। ऐसा भी बहुत विधान गाया गया है। रुद्राक्ष संबंध में ऐसी कथा है, एक दफा भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवधरदानी करुणा वरुणालय प्रात पर ब्रह्म भगवान शिव जी जंगल में तप करने के लिए गए। तप के जो देव है, तपस्या के जो देव है, तप जिन्हों को बहुत प्रिय है, जंगल में जाकर पद्मासन लगाकर ध्यान लगाकर एकांत में और नितांत एकांत में आसन जमाए के भोलेनाथ बैठे और तप करते। तप के देव है जिसको तप बहुत प्रिय है। संसार में जो तप नहीं करता है उसका पत हो जाता है। तब शब्द ही ऐसा है, उसको उलट दो, तप और पत अपने आप पत हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर अगर तप न करे, भक्ति न करे, भजन न करे तो उसका पत हो जाता है, अपने आप ही उसका पतन होता है। भगवान शिव तो तपस्या के देव है, तप जिसको बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान शिव जी जंगल में बैठे हुए तप कर रहे हैं। और जो अपना ही सहज स्वरूप है, अपना ही भोलेनाथ का, भोलेनाथ का अपना स्वरूप कौन है? ओमकार है वो भोलेनाथ का अपना अपना अपना स्वरूप। और अपना ही नाद गाने लगे, अपना ही गीत गाने लगे, जीव को भी ऐसा ही करना चाहिए। शिव की अगर भक्ति करना हो तो हमारे जो परात पर ब्रह्म भगवान शिव है उसकी धुन गुन गुनाना चाहिए। इसलिए तो हम गाते हैं, ओम शिव परात पराशिव ओंकारा शिव तव शरणम।

ओमकार का भोलेनाथ जंगल में जाकर जाप करने लगे। समय व्यतीत होते हुए एक दफा भगवान भोलेनाथ की अपने सहज ही समाधि खुली, आंखें खुल गई और आंखों में से सहज ही अश्रु के दो बिंदु पृथ्वी में गिर पड़े और भोलेनाथ का यह प्रसाद अपने आप ही सहज ही जो अश्रु गिरा उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और वृक्ष में सुंदर फल आया। भोलेनाथ ने देखा, ऐसा है, मेरे आंख में से जो अश्रु गिरे और उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गए और फल आए। भोलेनाथ ने देखा, आशीर्वाद का धो दिया, जा तेरा नाम रुद्राक्ष रहेगा, मेरी आंखों में से जो गिरे उसमें से जो प्रकट हुए वो फल मुझे भी बहुत प्रिय रहेगा और जो कोई वो पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा और नाम दिया है रुद्रा। भोलेनाथ ने तप किया और तप में से जो अश्रु गिरे उस अश्रु में से, उस प्रसाद में कुछ न कुछ चीज हमें मिल जाती है। और शास्त्रों में गाया भी गया, रुद्राक्ष अक्षी रुद्राक्ष रुद्राक्ष अक्षी रुद्राक्ष। शंकर जी के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ वृक्ष रुद्राक्ष, वृक्ष रुद्राक्ष के फल का नाम रुद्रा, वृक्ष का नाम भी रुद्रा, फल का नाम भी रुद्राक्ष। रुद्र की

में से गिरा रुद्र वत्ता अक्ष रुद्र मैंने शी, जो दुख का जो मूल होता है उसको सहार करने वाले भोले बाबा का नाम रुद्र अक्ष मैंने गिरा। नाम पड़ा है रुद्राक्ष। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जो कोई रुद्राक्ष पहरेगा उसको बहुत फल मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत लाभ होगा, और जो कोई मुझे भी चढ़ाएगा और रुद्राक्ष की कोई भी पूजा करेगा उसकी महिमा उसका फल कोई नहीं गा सकता। ऐसी रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। कम से कम एक रुद्राक्ष पहराया, एक ही रुद्राक्ष हम पहरे। भोलेनाथ का ये प्रसाद है और एक रुद्राक्ष पहरे, हमारा सब ओर से सब रीति से सब तरीका से ठीक ठाक हो जाता है और जो कोई हमारी मनोकामना है वो सब पूर्ण होगा। ऐसे रुद्राक्ष की बड़ी भारी महिमा। फिर भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दिया, सारे ब्रह्मांड में बहुत जगह पर ये प्रकट हुए पृथ्वी लोक, स्थल का भी नाम दिया गया है लेकिन बहुत जगह पर है। ऐसे रुद्राक्ष का चार प्रकार गाया गया है, सफेद रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का और काला रंग का। ऐसे हमारे समाज की व्यवस्था भी चार प्रकार की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऐसे अपने अपने जाति के मुताबिक रुद्राक्ष लगाए तो और फल मिलता है। अगर ऐसा न भी करे और जो प्रसाद मिले उसमें लगा ले तो भी लाभ लाभ लाभ होता है, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ। रुद्राक्ष पहनने से मुक्ति मिल जाती है, रुद्राक्ष पहनने से श्याम सदाशिव भगवान शिव जी का दर्शन हो जाता है, रुद्राक्ष पहनने से धन दौलत माल मिलकर सब मिल जाती है, रुद्राक्ष पहनने से बहुत सुख शांति और आनंद मिलता है, रुद्राक्ष पहनने से कई हमारे दर्द भाग जाते हैं, रुद्राक्ष पहनने से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है, रुद्राक्ष पहनने से हमारा मनोबल दृढ़ हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है और रुद्राक्ष पहनने से हम बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत महिमा है। इस संबंध में हमारे शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, देवी पुराण में, कई विधिवेद पुराण में, कई कई शास्त्रों में तो बहुत महिमा गाई गई है, उसमें तो महिमा है ही। और फिर रुद्राक्ष उपनिषद में भी रुद्राक्ष की बहुत महिमा गाई गई। हमारे यहां बहुत उपनिषद है, उसमें एक रुद्राक्ष उपनिषद है, उसमें रुद्राक्ष की भी महिमा है, उसमें ऐसी महिमा गाई गई है। काशी नाम का एक नगर था और उस नगर में एक राजा रहते थे, वो भी राजा शिव भक्त थे, पहले के राजा महाराजा क्षत्रिय बहुत शिव भक्ति करते थे, भाव भक्ति से प्रेम से। एक दफा ये राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने फरने के लिए गया, जंगल में बहुत दूर दूर तक पहुंच गया और वहां एक दृश्य देखा है राजा, कई भूत प्रेत सब आनंद करते थे, आनंद आनंदोत्सव मनाते, आनंद में सब नाचते थे गाते थे। राजा ने देखा ये सब भूत प्रेत है।

राजा ने पूछा ये सब क्या बात है। सबने दिखाई राजा हमारी पुत्री का ये विवाह हो रहा है, कल ही विवाह होने वाला है और उस उत्सव का हम आनंद मनाते हैं। राजा ने पूछा तो वो किसके साथ उसका विवाह होगा और ये सब क्या है। सबने दिखाया आपके नगर में एक युवक रहता है और कल घोड़ा पर बैठकर उसको पानी पाने के लिए जाएगा और एक स्थल बताया, उस स्थल पर वो गिर जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसको हम भूत बनाएंगे और हमारी ये पुत्री का विवाह वो भूत के साथ हम करवाएंगे। राजा को ये सुनकर तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये सब बात है। राजा आए अपने नगर में और जो समय बताया था, जो स्थल बताया से दूसरे दिन राजा वहां खड़ा हुआ और वो ही युवक घोड़ा पर बैठकर पानी पाने के लिए जा रहा था, वो ही स्थल आया। ठोस लग गई, घोड़ा गिर गया, युवक गिर गया, युवक की मृत्यु हो गई। राजा ने ये सब दृश्य देखा, राजा का तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बात। चलो हम जंगल में देख जाए और देखे। फौरन ही राजा जंगल में आए और वहां सब भूत प्रेत जो परिवार थे सब रोने लगे, रुदन करने लगे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे आनंद की बात है और क्या है सब, कल जो बताया वही तो हुआ है सब, और सब रुदन कर रहे, क्या सब बात है, कोई समझ में नहीं आती क्या। राजा ने सबको पूछा क्या कुछ कोई तकलीफ है, क्या है कुछ, आनंद की बात कर रहे थे और आज ये सब रोने लगे, क्या है सब। सब भूत प्रेतों ने बताया हमारा जो आयोजन था उसको भूत बनाने का, लेकिन जिस स्थल पर उसकी मृत्यु हुई उस स्थल के भीतर पृथ्वी के अंदर एक रुद्राक्ष था और रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो उसको हम भूत नहीं बना सके। और भगवान भोलेनाथ के दूत आए, बबम बम बबम बम बबम बम गाते हुए अलग अलग अलग पुकारते हुए आए और हमारी कुछ सुनी नहीं। फौरन ही उस व्यक्ति को लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचे और राजा हमने प्लान किया था उसको भूत बनाने के, लेकिन हमारी वहां कुछ चली नहीं, रुद्राक्ष पर उसकी मृत्यु हुई तो भोलेनाथ के दरबार में वो चले गए। राजा ने ये सब बात सुनकर बहुत आनंद हुआ, ओ ये सब रुद्राक्ष की ऐसी महिमा। फिर राजा ने काशी नगर में आकर ऐसा आदेश दिया, चारों रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष का पेड़ बोया जाए और सब रुद्राक्ष पहरे भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाए, उसकी पूजा करे, शिव की महिमा बढ़ाए, शिव की महिमा गाए और सब रुद्राक्ष पहने, चारों ओर आदेश दिया। तो देखिए ये रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष पहरा नहीं है, देखा नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, वो पृथ्वी में था, उस पर जिसकी मृत्यु हुई तो वो भूत नहीं बना, भूतनाथ के दरबार में चले गए। कैसी रुद्राक्ष की महिमा है, हमारे भोलेनाथ को ये रुद्राक्ष बहुत प्रिय है और रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। श्री महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुख गाए गए, 14 प्रकार, 14 मुख वाले या 14 प्रकार।

0: ऐसी महिमा गाएगी। रुद्राक्ष उपनिषद में तो 21 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए, शिव महापुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्ष गाए गए हैं। उसमें से हम एक एक का थोड़ा विस्तार से देखें क्या महिमा है। एक मुख वाला रुद्राक्ष जो पहरेगा उसकी पूजा करेगा, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएगा, उस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, उसको मोक्ष मिलेगा, धन लक्ष्मी मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा और सब कामनाओं पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्महत्या का अगर पाप किया गया हो, ऐसा बड़ा पाप जो किया गया हो, वो एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसका सब पाप भस्म हो जाएगा। एक मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है, वो साक्षात शिव स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष कहीं भी नहीं मिलता है, ऐसे संतों के मुख से सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल में है। शिवरात्रि के दिन में जब पशुपति महादेव की रात में जब पूजा होती है तब एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, और अगर ये प्रसाद में मिल जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक मुखी की नकल मत खरीदना, और मिलता भी नहीं है। तो एक मुखी रुद्राक्ष की ऐसे बड़ी भारी महिमा गाई गई है। और दो मुख वाले रुद्राक्ष गौरी शंकर के स्वरूप पे माने गए हैं। महादेव का स्वरूप है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है, शिव पार्वती स्वरूप है, शिव शक्ति दोनों साथ में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दो मुखी रुद्राक्ष की भी बहुत महिमा गाई गई है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष का प्रभाव तो और ही है, और सर्व विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। अगर विद्या की प्राप्ति करना हो, हम सब विद्या की पिपासु है, हमारे धर्म में बुढ़ा हुए फिर भी विद्या की साधना कर, उपासना कर, और वही विद्या से साविद्याया विमुक्तये, साविद्याया विमुक्तये। हे देवाजी देव महादेव, हमें ऐसी विद्या दो हमारी।
1: श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के संग। जी हाँ, FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1 पर। आइए कुछ ही देर में समाप्त करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
2: ऐप राही सिद्धिया आधार विच मुफ्त ईमेल अपडेट करन नू समर्थ बनाया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला के लिए

0: से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पेट्रोकेमिकल, शहरी नकल व हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर्स के कल पुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिस पर 7,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनवो, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकत दार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निज़ाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकत दार हैं। उन्होंने कहा कि यह शराकत दारी काबिल एतमाद मसनूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमायाकारी और तआवुन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इकतसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दोतरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के 9 मुंतखबा अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असम्बलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निज़ाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज, इख्तरा, मसनूई जहानत, AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुअसर तरीके से इस्तेमाल करें।
2: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
1: भारत ने ऑपरेशन एमस्तात के तहत जिलजिले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खजाना ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासरा लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर

डेल्सी रेड्रिग्स ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निज़ाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाप करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया

0: कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा

0: फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, समाप्त कर रहे हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जहां प्रशासन की कोशिश रहती है इस यात्रा को सफल बनाने की, वहां हमारा भी प्रयास यही रहता है आपके साथ जुड़कर आपको अपडेट करते रहे और आपको अब तक अपडेट पहुंचाते रहे। तो अपडेट लेकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन रामबन से। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। जो आज दूसरा दिन था श्री अमरनाथ यात्रा का, तो आज जो सुबह जो यात्री जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना किए गए थे पहलगाम बालतल के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ जाने के लिए, तो उनका जो दोनों काफिले थे करीबन 11:30 के आसपास यहाँ बानहाल से कश्मीर डिवीजन की जो इंतजामिया है उसके हवाले किए गए, वहां से उनका निजाम जो है सिक्योरिटी का उनके हाथ लेता है। तो बिल्कुल खुश असलूबी से ये दूसरा दिन भी कहेंगे ये गुजर गया बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि कल पहला दिन था 2 तारीख का, लेकिन ऑफिशियली जो कश्मीर में जो यात्रा शुरू हो रही वो उसके लिए आज 3 तारीख का जो डेट मुकर्रर किया गया था पहले, यानी कश्मीर में आज पहला दिन है। लेकिन यहाँ अगर हाईवे की बात करें आज दूसरे दिन जो कानवाई है, कल भी आया था ट्रैफिक 4800 ये जो यात्री थे उसमें, और अगर कहेंगे तो जो अनरजिस्टर्ड यात्री थे जो यहाँ पर रोके गए थे रामबद और बानहाल में, उनकी भी करीब 4000 के करीब ये तादाद थी। तो आज का जो ये गाड़ियां जो है बिल्कुल मतलब जो ट्रैफिक उस वक्त बंद रखा जाता है, बाकी जो भी सिविल ट्रैफिक होता है नेशनल हाईवे पर कश्मीर से या जम्मू से, दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं तब तक जब तक यात्रा का वो वहां पर जो बानहाल और काजीगुड़ टनल है उसे पार नहीं कर जाते। तो उसके बाद अब वहां से जो ट्रैफिक जो रुका हुआ था टनल के दोनों तरफ कश्मीर साइड भी और बानहाल साइड, उसके अलावा रामबद और दूसरे जगहों पर, तो उन्हें भी चलने की इजाजत दी गई, और इस वक्त भारी तादाद में ट्रैफिक चल रहा है। और अगर कहेंगे तो रामसू के सेक्टर में या बानहाल और रामपुर से सेक्टर में हल्का हल्का जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रैफिक सुबह 5 बजे से रोका गया था जो सिविल ट्रैफिक था, तो उसको छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा जो वन वे ट्रैफिक एरिया है हाईवे पर, अभी बहुत सारा इलाका जो वन वे ही है अभी, यानी जहां पर सिर्फ 2 गाड़ियां गुजरती है, जो 4 लेन सेक्टर स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी हमें है तो जहां पर अभी जाम की सी सूरत हाल बनी हुई है। इस दौरान ये जो श्री अमरनाथ यात्री जो है या जो टूरिस्ट से, उनके लिए एक अहम जो इतला ये है कि जो 3 बजे के बाद उन्हें बानहाल से आगे चलने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो उसी हिसाब से अपना प्लान करें जब जम्मू से निकले, क्योंकि 3 बजे बानहाल में कट ऑफ टाइमिंग होगा, और 3 बजे के बाद कोई भी गाड़ी बानहाल और काजीगुड़ टनल पार करने की इजाजत नहीं होगी, उसमें यानी सब गाड़ियां नहीं बल्कि वो गाड़ियां जिसमें श्री अमरनाथ यात्री हो या जिसमें टूरिस्ट को जो सयाहत की गरज से जो अनरजिस्टर्ड जिनको कहेंगे हम ये जो पिलग्रिम्स, तो वो उनको कोई इजाजत नहीं होगी 3 बजे के बाद बानहाल काजीगुड़ टनल क्रॉस करने की। इसी तरह 2 बजे रामबन में रोका जाएगा चंद्रकूट में, जो 2 बजे तक वहां पर टूरिस्ट या जो भी यात्रा गाड़ियां पहुंचेंगी जो भी बाद में आती सुबह की कार्रवाई निकलने के बाद, तो उन्हें वहां पर 2 बजे के बाद आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, यानी 2 बजे उधमपुर ये जो चंद्रकूट है वहां पर बंदिश है, उसके बाद 3 बजे बानहाल से आगे बढ़ने पर पाबंदी है, यानी कोई गाड़ी नहीं जाएगी। जो ट्रैफिक है जो बाकी सिविल ट्रैफिक है उनके जो कश्मीर से जम्मू जाने वाले हैं उनको ये जहन नशीन करनी चाहिए बात की सुबह जो 11:30 बजे उन्हें काजीगुड़ से आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है, इसलिए वो यात्रा के पेश नजर, क्योंकि यात्रा की सिक्योरिटी के पेश नजर जो इंतजाम ये किए गए हैं, ये जो प्लान बनाया गया है मुरतब किया गया है सिक्योरिटी प्लान, तो उसके हिसाब से या ट्रैफिक प्लान तो वो उसी के हिसाब से बनाया गया है, तो इसलिए जो आम मुसाफिर हैं जो कश्मीर से जम्मू का सफर या गाड़ी वाले हैं करना चाहते हैं, तो उनके लिए अहम खबर यह है कि वो सुबह 11:30 बजे काजीगुड़ से छोड़े जाएंगे, इसलिए उनका बेहतर है कि वो सुबह 5 बजे 4 बजे निकलकर वहां दिन भर अब

0: जी श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे साथ, और इस वक्त ट्रांजिट कैंप श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इमरान नायको। जी इमरान साहब, क्या कुछ ताज़ा स्थिति है इस वक्त?
1: बिल्कुल, देखिए जैसे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से ही शुरू हुई है और आज दूसरा दिन है, और आज भी हम देख रहे हैं श्रीनगर शहर में सुबह थोड़े से बादल छाए हुए थे, लेकिन इस वक्त धूप खिली हुई है। और जहां तक यात्रियों का ताल्लुक है, जो भगवती नगर बेस कैंप से यात्री कश्मीर वारिद हुए, तो उनमें से कई सारे जो साधु साध्वीज और जो इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और खासकर इसमें मर्द और खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में पहुंचे और यहाँ से यहाँ इन्हें हर तरह की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है, वो रखी गई है। और सुबह यहाँ से ये दोनों रूट्स की तरफ निकलेंगे और पवित्र गुफा के दर्शन के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच में। और आज भी यहाँ से एक जत्था जो है रवाना हुआ, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, उनके सख्त तरीन बंदोबस्त के बीच में उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की सहूलियात रखी गई है। और खासकर जो यात्री के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज रखी गई है कि अगर उन्हें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या कोई उनकी शिकायत हो, इसी तरह से फिजिकली या ऑफलाइन मोड पर भी यहाँ एक काउंटर सेटअप किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रखे गए, और चाहे वो श्राइन बोर्ड हो या यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, और इवन की वॉलंटियर्स ग्रुप जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सो ओवरऑल इस साल भी अमरनाथ जी यात्रा को लेकर आज दूसरे दिन बड़ा उत्साह है, जोश जज्बा है, और यात्रा जो है, यात्री जो है वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। और खासकर श्रीनगर शहर में यहाँ ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए खाने पीने की सुविधाएं रखी गई है, पीने के पानी, और यहाँ फिर वॉशरूम्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आरएनबी डिपार्टमेंट हो, या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, वो उनके अहलकार यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और पल पल के साथ जो यहाँ यात्री स्टे किए हुए हैं, उनकी खबर ली जा रही है, उनसे बात हो रही है, ऑफिशियल्स यहाँ आ रहे हैं और यात्रियों से बात कर रहे हैं। इवन की हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल्स है, वो यहाँ यात्रियों के साथ गुफ्तगु कर रहे हैं, और वो जिसे हम कहते हैं कि कल्चरल इंटीग्रेशन का एक अलग सा ही माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। और खासकर अपने तहजीब, तमद्दुन, अपने कल्चर को जो शेयर करने का एक मौका इस यात्रा के जरिए से मिलता है, वो शायद हमें श्रीनगर से बेहतर कहीं और ना मिले। उस तरीके का यहाँ शहर में माहौल है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ट्रांजिट कैंप के अंदर है। और इसी तरह से जैसे हम लास्ट ईयर भी हमने देखा था या कई सालों से, कि जो HMT में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, और यहाँ से भी गवर्नमेंट के तकरीबन मोर देन 25 डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, जिसमें सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP, ट्रैफिक पुलिस, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, हर महकमे के लोग यहाँ पे हैं, जो पूरी यात्रा को यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, और कहीं रूट्स पर नजर है, कहीं ट्रांजिट कैंपस पर नजर है, कहीं वेदर को मॉनिटर किया जा रहा है। सो हर एक चीज की यात्रा की हर कड़ी को इस ICCC से मॉनिटर किया जा रहा है। सो बस मकसद यह है कि ये यात्रा एक पुरअमन और पुरासुख तरीके से मुनक्किद हो।
0: इमरान साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आज पहला दिन है श्रीनगर से जो यात्री रवाना हुए

0: तो कितना उत्साह देखा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये शायद पहली बार नहीं है कि हर साल हम देख रहे हैं, एक तो यात्रियों में इजाफा और दूसरा ये कि एक अलग ही वो जोश, अलग ही वो जज्बा, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही फिजा जो है हर गुजरते दिन के साथ एक अलग ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है या हर गुजरते साल के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जिस तरह से वेलकम किया गया नौगाम बाईपास पर यात्रियों का, जब वो जम्मू से आ रहे थे पहला जत्था, तो चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हों या SSP श्रीनगर हों या छोटे जो सीनियर ऑफिसर्स हों या लोकल्स, आपने देखा किस तरह से गुलदस्ते यात्रियों को पेश किए गए। और बाद में जब यात्रियों ने अपनी बात रखी उसमें आपने देखा होगा कि क्या चीजें वो बयान कर रहे थे, सेम आज भी वही सिचुएशन है। जैसे यात्री इस यात्रा को लेके कश्मीर की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, जो यहाँ लोग मेहमान नवाजी हमेशा यात्रियों को करते हैं। इवन मैंने बहुत सारे यात्रियों से हर साल मैं पूछता हूँ, इस साल पहले भी मैंने पूछा, इवन कल भी मैंने बहुत यात्रियों से ये कहा था कि ट्रांजिट कैंप के बाहर जब आप कहीं जगह पे लोकल से मिलते हैं, शॉपकीपर से मिलते हैं या पूरे वाले से मिलते हैं, किसी भी स्टेक होल्डर से मिलते हैं, तो उनका आपके साथ किस तरीके की वो रवैया होता है या किस तरह से रिस्पॉन्स होता है, तो उनका जो जवाब उसमें है शायद हम अपने अल्फाज में बयान ना कर पाए। और यही कश्मीर और कश्मीरियत की खासियत है और यही इस यात्रा को सबसे खूबसूरत पल बना देती है कि जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोग यात्री यहाँ यात्रा के लिए आते हैं और फिर यहाँ कश्मीर की कम्युनिटी से बात करते हैं और जो इज्जत और जो मेहमान नवाजी उनको मिलती है और उसके बाद जिस तरह से वो उस मेहमान नवाजी और उस रेस्पेक्ट को बयान करते हैं, शायद इस यात्रा के जरिए से और कोई जरिया नहीं है जो कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के लोगों को, यहाँ की हॉस्पिटलिटी को बयान कर सके बेहतर तरीके से।
0: इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस 13 साल
2: पहले 3 मई।
0: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता इमरान नाइक उपाध्यक्ष को ट्रांजिट
2: इंडस्ट्री ने एक बने रहिए संक्षण के अपडेट्स के लिए उसे दुनिया में आकाशवाणी सबसे बड़े प्रभावशाली फिल्म उद्योगों में शामिल कर दिया। आज बॉलीवुड की चमक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के साथ आप जुड़ गए हैं और आप इस विशेष प्रसारण को समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो श्रोता हो, जो भगवती नगर का जो बुनियादी पढ़ाव बेस कैंप होता है, वहाँ से हमारे साथ जावेद महराज जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके साथ। जावेद महराज जी,

पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का दूसरा दिन है। दोपहर का वक्त है। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों तीर्थयात्री जम्मू में यहाँ तवी रिवर फ्रंट और दूसरे रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर अपना पंजीकरण कराने में व्यस्त है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दूसरे दिन आज 3,800 के करीब श्रद्धालु पवित्र गुफा की तरफ सुबह तड़के 4 बजे यहाँ जम्मू के पहले बेस कैंप से वादी की ओर कूच कर गए। इस सिलसिले में अभी तक की सूचनाओं के अनुसार तीर्थयात्री प्रसन्नता के साथ वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उधमपुर और रामबन चंद्रकूट में यात्रा के नाश्ते और आराम का इंतजाम रखा गया है ताकि तीर्थयात्री सहूलियत के साथ अपना सफर जारी रख सकें। अभी तक यहां जम्मू में सुबह से धूप खिली हुई है और तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को मौसम की असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन तवी रिवर फ्रंट पर खेमे, खाने पीने और नहाने धोने के लिए खातिर खा इंतजाम रखा गया है और साथ ही तवी के तट पर बनाए गए शिविर में शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे यात्रियों को आराम मिलता है। इस दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने मजीद थर्ड एसी चलाने का फैसला किया है और साथ ही कटड़ा बड़गाम स्पेशल ट्रेन की सेवा भी बढ़ा दी गई है। इससे ज़्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिलने के

0: चांसेस बन सकते हैं, और इससे ये बात ज़रूर होगी कि जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँचना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनके लिए ट्रेनों की सुविधाओं को और बढ़ा दिया गया है। बात यहाँ शहर में यात्रा के मद्देनज़र ट्रैफिक मैनेजमेंट की करें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी सुचारू रूप से चल रहा है, जिसकी वजह से शहर में इस बार जाम भी कम देखने को ही मिल रहे हैं और यात्रियों को भी बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सहूलियात हो रही है। यहाँ शहर में कई जगह पर स्थानीय दुकानदारों ने लंगर भी लगाए हैं, जो यात्री शहर के बाज़ारों में घूम रहे हैं वो लंगर का स्वाद भी ले रहे हैं और यहाँ के स्पेशल व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उम्मीद है ये तीर्थ यात्रा इसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा कामयाबी के साथ अपना सफर तय करेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद मेहराब साहब। तो श्रोताओं, ये जावेद मेहराब भगवती नगर के बेस कैंप से हमारे साथ जुड़ चुके थे।

0: पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने हुए हैं हमारे संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, यहाँ पे एक अपडेट आप तक पहुँचाना चाहेंगे। ये दोपहर का अपडेट है। 2 बजे तक, आज दोपहर 2 बजे तक 5,505 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,244, महिलाएं 1,040, बालक 59, साधु 17 और सिक्योरिटी फोर्स जो सिक्योरिटी कर्मचारी जो है 145। ऐसे कुल मिलाकर संख्या बनती है 5,505 की।
1: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें, ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें, ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: जी श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण के संग, और इसमें क्षण क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में, एक क्रम में हम अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं और आपसे बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस तारिक अनंतनाग से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहाँ पर। जी तारिक साहब, क्या कुछ जो है जानकारी है आपके पास यात्रा और यात्रियों को लेकर?
1: जी जी जी, आज मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि अभी दोपहर का समय है। पहलगाम के जो प्राचीन रूट में सुहाने मौसम के बीच आज पहला दिन यात्रा का परंपरागत रूप से जारी रहा। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी के प्रतिमाओं की आध्यात्मिक यात्रा सुखद तरीके से जारी है। आस्था और श्रद्धा से भरी हुई इस यात्रा में आज सुबह 4 बजे उन्होंने आधार शिवत से यात्रियों का जत्था जंदलवाड़ी से फिसलन, विशुताप, रोजबल और नागाकुटी से होते हुए शिशनाग और पंचधरनी पहुंच रहे हैं। चंदनवाड़ी के जो प्रवेश द्वार से आज यात्रियों की कुल रजिस्ट्रेशन 2510 से जायद हो रही थी, तो शिशनाग और पंचधरनी में रात को उनके यात्रियों कल अमरनाथ गुफा पहुँच पाएंगे। और आज कोई भी जो पहलगाम जो प्राचीन रूट है, पहलगाम से कोई भी अभी आज के दिन गुफा नहीं पहुंचेंगे, वो कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और वो कल बाबा शिव के द्वार अपना माथा टेक कर विधेयक मंत्रों के साथ शिवलिंगम की पूजा अर्चना करेंगे। इधर आज नंदर कैंप काजीगुंड से पहलगाम प्राचीन रूट के लिए 86 छोटे बड़े वाहनों में 2130 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा में बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम पहुंच गया है, जिनमें 1706 पुरुष, 283 महिला, 126 साधु तथा 15 साध्वी शामिल है। पहलगाम में प्रस्थान के बाद यात्री रात को नुनवन बेस कैंप में भजन, पूजा अर्चना और धार्मिक रस्म रिवाज में मगन रहेंगे और वही रात का कयाम भी करेंगे।
0: जी जी।
1: तो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि जो पहलगाम और इसकी गर्दनावा के साथ साथ यात्रा ट्रैक में मौसम सुहाना है और मतला साफ है। श्रोताओं, मौसम की बात करें तो जिस पर इस यात्रा का सबसे ज्यादा निर्भर रहता है, तो मौसमी विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम तक पवित्र गुफा में जो तापमान दर्ज किया गया है 24 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ जो वातावरण में नमी की मात्र 87% दर्ज है। प्रशासन के ये जो प्रशासन के द्वारा जो नुनवन बेस कैंप में सभी एवं यात्रा ट्रैक पर भी यात्रियों के लिए हर जरूरत की व्यवस्था और एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध रखी गई है। यात्रियों को आवश्यक उपदेश और संपादन जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पूरे मार्ग में लाउड स्पीकर के जरिए सूचना साझा करते हुए देखे जाते हैं और उनको ऐसी हिदायतें देते हैं जो सफर के लिए लाजमी है। तो यात्रा प्रशासन की जानिब से भक्तों के लिए तमाम सुविधा प्रदान कराई गई, सुरक्षा से लेकर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। घाटी में दाखिल होते ही नवयुग टनल काजीगुंड से पहलगाम तक 3 दायरे वालों ये जबकि जदीद आलात से ले सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है, जिसपे देखा गया है कि हर एक यात्री ने इस चीज को बड़ा सहा और उस चीज को बड़ी खुशी से कहा कि बिल्कुल सिक्योरिटी की जबरदस्त जो बंदोबस्त किए हुए हैं, तो इससे कोई डर कोई खौफ पैदा नहीं होते और स्थानीय लोग जो है मुकामी जो

0: मुस्लिम है या और कोई लोग, तो जो इनकी वहां भगत करते हैं, तो इससे यात्री भी बहुत खुश है। तो 57 दिनों चलने वाली इस पवित्र यात्रा में भक्तों के आने की संख्या अच्छी खासी रहेगी। और इस तरह आज पवित्र यात्रा का पहला दिन इस आशा के साथ जारी है कि दर्शन करने वाले यात्रियों की जो निर्वसर्पण और मनोरथ सिद्ध होगी। विशेष प्रसारण के लिए मैं पहलगाम से एस तारिक।
1: जी तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बड़ा धन्यवाद।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ आप हमें डीटीएच पर भी सुन रहे हैं और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध हैं।
1: जी शाहिन जी, यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाहेंगे कि आप बेझिझक अपने सुझाव, अनुभव या विचार हमारे संग साझा कर सकते हैं हमारी एकमात्र हेल्पलाइन के माध्यम के साथ, जो है 9596990954 9596990954, या ईमेल के ईमेल आईडी के माध्यम से, जो है akashvanibaltal@gmail.com akashvanibaltal@gmail.com।
0: जी हाँ सायका, यहाँ पे अपने श्रोताओं के साथ कुछ साझा करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। बिल्कुल श्रोताओं, किसी भी यात्रा की पहचान जो है सिर्फ उसके गंतव्य से नहीं होती, बल्कि उस

0: सफर से होती हैं जो हमें उस गंतव्य तक ले जाता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ हर मोड़, हर पड़ाव और हर कदम अपने आप में एक अनुभव है। जी साइका
1: जी, श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम मार्ग और बालताल मार्ग। दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जो है जाने जाते हैं और हर

0: अरे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चले। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओ, अगर आप दर्शन के लिए बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं FM बालतल 103.7, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं FM पहलगाम 100.1। और बैठे हैं हम आपके साथ दर्शन के अपडेट्स के लिए। तो 3 बजे तक आपको बता दें, जिन श्रद्धालु ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, कुल संख्या है 8,343, और जिनमें पुरुष जो है 6,584, महिलाएं 1,420, बालक 109, साधु 35, सुरक्षा कर्मचारी 195, और कुल संख्या बनती है 8,343 आज 3 बजे तक। बने रहिए हमारे संग।
2: है परमानंद, इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बोतल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें, ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें, ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ आप हमें डीटीएच पर भी सुन रहे हैं और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध हैं।
2: भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, और उन्हीं भक्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9596990954 और ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com।
1: जी हाँ सर, यहाँ पे एक बार फिर हम अपने श्रोताओं के साथ ये साझा करना चाहेंगे जो 3 बजे तक हमें अपडेट मिला है श्रद्धालुओं के ओर से। जो श्रद्धालु ने 8343 श्रद्धालु ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे संख्या की। ये पुरुषों की संख्या रही है 6584, महिलाएं 1420, बालक 109, साधु 35, और जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सुरक्षा कर्मचारी ये 135। कुल मिलाकर संख्या बनती है तीन बजे तक श्रद्धालु ने जो दर्शन किए हैं बाबा भोलेनाथ के, संख्या 8343। तो आगे और भी बात करना चाहेंगे।
2: शुरू हुआ है और जाहिर की यात्रा जो है 57 दिन तक जारी रहेगी। 28 अगस्त को यात्रा सम्पन्न होने वाली है श्रावण पूर्णिमा के दिन पे, और हजारों की तादाद में रोजाना जो श्रद्धालु यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, आते रहेंगे बालतल के रास्ते भी, पहलगाम के रास्ते भी। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो भोलेनाथ का भक्त है वो कहीं से भी दौड़ा चला आता है भोलेनाथ की आवाज़ सुन के, भोलेनाथ के प्रेम में।

0: भक्ति है और उनकी श्रद्धा है जो उनको ले आती है भोलेनाथ की ओर और उनकी यात्रा को सफलता से संपन्न करती है।
1: जी हाँ, आगे भी बात करेंगे, फिलहाल कुछ भजन अपने श्रोताओं के लिए पेश करेंगे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में श्रोताओं आप बने हुए हैं हमारे संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच एवं आराधना चैनल के माध्यम से।

0: और इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रद्धालु बहुत ही उत्सुक देखे गए और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा करते हुए कुछ यूं कह रहे हैं, अपने विचार कुछ यूं साझा कर रहे हैं।
1: मैं नवीन अबोहर पंजाब से आया हूं। यहां पे इस साल जो हमें फैसिलिटी देखने को मिली वो पिछले लास्ट ईयरों से नहीं मिली। इस साल बहुत अच्छा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, डेट वाइज जा रहे हैं सर, ये नहीं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ, बहुत अच्छा लगा हमें आके। जम बम बम बोले।
2: हाँ जी, मेरा नाम पूजा है। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, सुरक्षा वगैरह का कोई डर नहीं है। जैसा बताते हैं ना पहले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमला होने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे, कितनी बार तो चेकिंग होती है यहाँ पे, सब बहुत अच्छा है। मौसम भी सर
3: यहाँ का प्रशासन विकास गुप्ता है, मैं रहने वाला जिला का हूँ। यहाँ का प्रशासन इतना वो है, पूछो मैं क्या, कितनी परेशानी हुई है हमको आने में, वो अमीर को जान के कितनी परेशानी हुई है। आपको अगर बैग चेक करने हैं तो पहले करो ना, आप चार जगह बैग चेक करके हो, गाड़ी रुकवा के हो, या पहले की नहीं, कितनी परेशानी होती है पूछो मत, कितनी परेशानी होती है सर। उसके बाद हर यात्री यहाँ परेशान है, हर यात्री परेशान है, पूछो मत क्यों परेशान है।
4: मुझे पता प्रशासन ने क्या से इंतजाम किया है
3: सर, इनकम कोई नहीं है। हम सुबह से 5 बजे से लाइन में लगेगी अपने कार्ड लेने के लिए, 12 बजे बंद कर।
5: मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ, दूसरी बार आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, थैंक यू फॉर मोदी।
6: सेम
7: बताओ।
6: मेरा नाम टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब, मैं भी दूसरी बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाएं, जो नहीं आ पाते उनको भी इतनी समर्थ बनाए कि वो भी आ सके।
4: अच्छा, यहाँ का माहौल क्या आपने देखा?
6: बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा प्रबंध है।
4: और वहाँ जो आपने जो लोग हैं जो आना चाहते हैं उनका क्या संदेश है, क्या मैसेज है
6: उनके लिए? तो मैं यही कहना चाहती हूँ भगवान उन पर भी कृपा करें, उनको जल्दी से जल्दी बुलाएं जो आना चाहते हैं, जो इच्छुक
5: हैं, अभी जो सोचते हैं अभी हम नहीं जा सकते
6: उन पर भी बोलो,
5: मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: माहौल कैसा है?
5: बहुत अच्छा माहौल है, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। आर्मी वालों का बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है, मतलब बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, थैंक यू।
8: शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया जो इस साल में हुआ है पिछले साल से भी बेहतर हुआ है। और मैं सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करें। धन्यवाद।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो है आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो सायका, कुछ देर पहले हमने श्रोताओं से बताया कि हम पहलगाम मार्ग की बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हम श्रोताओं को कहना चाहेंगे ये परंपरागत और सबसे पुराना यात्रा मार्ग माना जाता है। इस रास्ते की कुल लंबाई जो है लगभग 48 किलोमीटर है। यात्रा आमतौर पर कई चरणों में पूरी की जाती है, जिसे शरीर को ऊंचाई के हिसाब से ढालने की समय मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी अपने श्रोताओं को बता दें कि पहलगाम से आगे बढ़ते ही यात्री चंदनवारी पहुँचते हैं। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, बहते हुए नदी नाले और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य यहाँ हर कदम पर देखने को मिलता है।
0: जी सायका, ये भी बताना चाहेंगे श्रोताओं को कि इसके बाद आता है पिसू टॉप। इस पड़ाव की चढ़ाई जो है कुछ कठिन ज़रूर है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य नजर आता है वो हर थकान को भुला देता है।
1: बहुत खूब। और आगे बढ़ते हुए यात्री शेषनाग पहुंचते हैं और फिर नीली झील और उसकी चारों ओर खड़ी पहाड़ियां इस स्थान को और अद्भुत रूप दे देती हैं। कई यात्री इस पड़ाव को यात्रा का सबसे सुंदर स्थान जो है वो बताते हैं।
0: जी, शेषनाग से आगे क्या होता है, कहाँ पे हम पहुँचते हैं, तो वो इस भजन के बाद हम साझा करेंगे अपने श्रोताओं के साथ।

0: तो शेषनाग की बात हो रही थी, तो शेषनाग से आगे का सफर जो है सायका, महागुण स्टॉप के रास्ते होता हुआ पंचतरणी तक पहुंचता है। ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, इसीलिए यहाँ धीरे चलना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और फिर आता है वो पल जिसका हर जो है भक्त, बाबा का भक्त इंतजार करता है।
1: बिल्कुल। और पंचतरणी से आगे पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा, जैसे ही बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो जाती हैं। लंबे सफर की थकान, कठिन चढ़ाई और सारी परिश्रम उस एक दिव्य दर्शन के सामने मानो समाप्त हो जाती हैं।
0: और सायका, अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की, यानी जो बालतल का मार्ग
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: जी हाँ, बालतल का रास्ता छोटा है, इसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। यही कारण है कि कई श्रद्धालु जो है इस मार्ग को चुनना पसंद करते हैं, इसी मार्ग से जाना पसंद करते हैं। लेकिन सायका, यहाँ पे ये कहेंगे कि छोटा होने का मतलब आसान नहीं होता है।
1: बिल्कुल, बहुत खूब। और इस मार्ग पर कई जगह जो है चढ़ाई काफी तेज भी है।

और पथरीले हिस्से भी आते हैं, इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो यात्री इस मार्ग का चुनाव करते हैं उन्हें ये कहेंगे कि प्रशासन की सलाह और मौसम संबंधी निर्देशों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है।

0: दोनों मार्गों की यानी बालतल और पहलगाम मार्ग की तो यहाँ पे अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे, चाहे आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करें या बालतल मार्ग से, दोनों ही रास्तों पर जो है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन की ओर से जो है सुरक्षा जो है सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। तो
1: और हर मुख्य पड़ाव पर जो है विश्राम शिविर, मेडिकल असिस्टेंस, पीने का पानी, इनकी व्यवस्थाएं जो है हुई हैं, टॉयलेट, सुरक्षा कर्मचारी और जानकारी केंद्र जो है उपलब्ध होते हैं।
0: जी, यात्रा के दौरान कई सेवा जो है सेवा समितियां और धार्मिक संगठन निःशुल्क लंगर सेवा भी चलाते हैं। सुबह की गर्म चाय हो सायका या खिचड़ी दाल और रोटी का भोजन हो या फिर हल्का फुल्का जलपान, हजारों सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ दिन रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं।
1: और यही सेवा भाव जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को और भी विशेष बनाता है। प्रकृति का सम्मान करें, हम ये श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि प्रकृति का सम्मान करें, ये हिमालय जो है हमारी धरोहर है, प्लास्टिक प्रयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंके। और यात्रा के दौरान जो है हम ये कहेंगे कि इन बातों का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
2: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग आप जुड़े हुए हैं। आइए अब बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती सुनते हैं।
1: ओम गजानन उमासुतं शोकविलासकारकं नमामि विहरेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।

0: त्रिवेणी के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: सर्व देवता च विश्वकारम के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर जगन्नाथ श्री अमरनाथ सर्व तीर्थों के चरण कमलों

0: श्री सर्वसुत्री शाहजी महाराज के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बाबा रचालसा जी, श्री बाबा निहालसा जी, श्री बाबा कंगालसा जी, श्री बाबा झेंकर सा जी, श्री बाबा मुस्ताक सा जी, श्री बाबा दीदार सा जी, श्री बाबा ब्रह्म सा जी, श्री बाबा शंकर सा जी, श्री बाबा अनूप सा जी, श्री बाबा बजान सा जी, श्री बाबा बहादुर सा जी, श्री बाबा महबूब सा जी, श्री बाबा तनक शाह जी महाराज बंद के वाले होंगे चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: साढ़े बारह घरानों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: गुरु महाराज सच्चे पिता जगत के वाले, चार पहर दिन सुख का बिताया है, चार पहर रात्रि भी सुख की बितानी है, आठों पहर सुखाले सुख करे, सवालियों के सवाल पूरे करे, बंदी मानव की बंद खलाश नगर खेड़ाया वाद रहे, राजा राज करे प्रजा सुखी बसे, साधु का शंकर मुक्का मिल, भजन का प्रताप दुख कलेश का नाश, अड़े सो झड़े शरण पड़े तो तरे, काम सच्चे वाचा सुत्र शाह जी महाराज आप करें डेरा।

संध्या समय की अरदास तेरे सचखंड में प्रवास अक्षरवाधि घाटे भूल जोग वक्षणहार सद्गुरु बाबा सुंदरेशा जी महाराज करो प्रवाण प्राणी मात्र का हो कल्याण शुरू करो दंडवती वंदना सर्व कला समृत।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स समीर अहमद भट्ट और इंद्रपाल सिंह थे। मैं आपके साथ ही उद्घोषक शाहिना ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक साइका सलीम
1: और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून। प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

श्वेत वृषभ पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करणारा, महादेव जी ने आनंद आपणारा, हे तेजस्विनी महागौरी देवी हमने शुभ पदार्थो आप। महागौरी ये पार्वती देवी एम कहवाई छे के एक समय महादेव जी पोताना आ अर्धांगना शक्ति नो परिहास विनोद मा करता काली श्यामा एम कहूं। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर, एथी आ महागौरी कहवाय। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर के ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करणार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करणार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकीने हारना रूप में धारण करणार, हतमा कपाल भिक्षापात्र धारणार भगवान पशुपति महादेव जगदीश ने पदवी पाम्या। हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहण नी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप अमारा ऊपर प्रसन्न था,

हे गौरी, ज्यांना मस्तके चंद्रशौभिरयोशी ते महादेवजीची सम्मानित थैला, हे गौरी देवी अपने में प्रणाम करगीश। दुसाथीश, ये गौरी नु भवानी तरीके शंकराचार्य जी देवी अपराध क्षमापन मा स्तोत्र मा सुंदर स्तवन करियुश। भवानी किता भस्मा लेपो गरल मशानम।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर

एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक हैं, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भवसागर से तर जाते हैं।

जासुककों मुनिवर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

रास्ता देखे महल अटारी, पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं।